0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, सुबह के 5:05 हो रहे हैं. सुबह सुबह हिचकी माने कि गर्मा गर्म चाय, लेकिन सबसे पहले गर्मा गर्म पानी हो जाए तो आपके दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए. विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स. नीतू का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करें. रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. वैसे सर्दी का असर अब ज़्यादा पड़ने लगा है ना, तो बस अपना ख्याल रखिएगा और आपके मूड का ख्याल यहाँ पर हम रखते हैं विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. चन एवरग्रीन सदाबहार गाने सुबह के 7 बजे तक. व्हाटएवर यू माइट बी ऑलरेडी, तो काफ़ी मैसेजेस आ चुके हैं यहाँ पर ऑन सैंक.

0: मनचली फिल्म का बहुत ही सराबहार गाना, तन मन धन सब है तेरा, बस जीने के लिए ये तो चाहिए। हाँ जी, पैसे की जरूरत है, लेकिन प्यार में अगर आप भी पड़ जाए तो क्या बात है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Masti.
0: 14 minutes past 5 in the morning, of course. Once again, abhi abhi tune ki ye hai to Radio Masti. Then Neetu aapka swagat karti hai, welcoming you all. Good morning, pranam once again. And bahut sare messages ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर। वंस अगेन म्यूजिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस हम तो यही मानते हैं कि रोज़ म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ, और ये जो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो वाकई में बहुत ही यादगार होते हैं। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को भी म्यूजिकल बनाते चले। एंड विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग शातु बिनागस की प्यारी सी ज्योति, आशनी, रेखा, सुरेखा एंड माधव परिवार, हमारे लिए भी थैंक यू। गुड मॉर्निंग आपको, यहाँ पर है कमलदीप एंड हैप्पी म्यूजिक डे गाना मेरे पूरे परिवार के लिए। मिला राम जी कल मोता ब्लॉश से एंड योर डियर वांस, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। आप है कौन यहाँ पर? सांझ और सवेरा वाला गाना ममा की फेवरेट, आपको अच्छा लगा चांदनी? बस ऐसे ही चमकते रहे इन गानों के साथ। गुड मॉर्निंग यहाँ पर, आप है कौन? भाई सूरज शर्मा सजादा, पूरे परिवार त्रियोली से प्रणाम आप सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू धीरज, आयुष, विधिशा, साथ में अश्विन, ज्योति, हरक परिवार, मौद आलबिया से प्रणाम। रेडियो मस्ती कनेक्टेड फ्रॉम ग्रीष्मो फ्लैग, प्रणाम आपको भी। हेमाक्षी, कुष्मिता, लवना, बिरमती, जयशन एंड

एंड आपके सभी डियर वंस के लिए प्यारी सी सुबह, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ठंडे ठंडे मौसम में आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माला सुमारू कैथो बोन से शुभ सवेरा आपको। गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग शीला जी एंड पूरे परिवार। L'espérance trébuché से, so wherever you might be, काम पर होंगे, bon courage, निकल रहे हैं घर से, अपना ख्याल रखिएगा, and ये सदाबहार गाने सब आपके नाम।

यही तो बस प्यार का जादू है भाई, तभी तो आपकी सूरत में वो जो रंगत है वो नजर आ जाती है। 525 तो चलिए नेक्स्ट गाना आप सभी के नाम चलाती है। अब्दुल सारा बानो, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको भी। आप आज फैमिली फ्रॉम गोशनवा एंड गुलाब जगा सिंह जी कावोलिन से पूरे परिवार के नाम बस इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इक्वली गुज आउट टू होम, यहाँ पर है मेरी बहन स्वीटी गंगू के लिए, आज उसका बर्थडे है, सो स्पेशल विशेज उनके नाम, और आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहे है भंजन परिवार। ख़ास तौर से आपकी तरफ से हेमलता पोतोपी मौसी पूरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्यार भरा नमस्कार आपके नाम, पति जी लाल, देवन, कविता, दीप, मायूषी, अनुत, अनीता, हेमंत, ओशिका, तुषार, सभी गणपत लचन परिवार की ओर से। चलिए आप सबके नाम, आप रहते हैं लावोचे से हैं सासू जी सीता, ओके आज आपका बर्थडे है, सब की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको, हर हर महादेव आपको भी, पति लाल देव, मामा शारदा, बगन, बेटा है विक्की, बहु कीर्ति, अवनी, वंश, सुया बिहारी, कोंगमा से आपके पूरे परिवार के नाम।

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: इन गानों के जरिए अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो बस क्या बात है, आप भी खुश हम भी खुश। 533 थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप। Bon courage to all those going to work and please be very careful, drive carefully. शैलेंद्र सिंह आशा भोसले की आवाज़ों में, यह है रफू चक्कर फिल्म का गाना, लेकिन आप आराम से चलाइएगा और अपनी मंजिल सेफली पहुंच जाइए।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: आज उजल शुरुआत आपके साथ.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है क्योंकि मन मर्जी में किया गया खर्च बाद में परेशानी बढ़ा सकता है. आपका बेफिक्र अंदाज कुछ लोगों को परेशान कर सकता है. That's why कामकाज में थोड़ा गंभीर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. एंड ऑफ कोर्स कार्यक्षेत्र में छोटी सी लापरवाही भी गड़बड़ी करा सकता है. That's why हर काम ध्यान से करें.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज आपका मन जो है पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल होकर अपने मानसिक शांति आपको मिलेगी. सम्मान भी बढ़ेगा. सामाजिक आयोजन में कोई उपहार या सराहना मिलने से मन खुश होगा. सेहत से जुड़ी परेशानी जो है पूरी पुरानी परेशानी से आपको राहत मिल सकती है. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिन को और खास भी बना सकता है.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. पढ़ाई और उच्च शिक्षा से जुड़े नए रास्ते आपके खुल सकते हैं. पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी रखें. पुराने उधार को चुकाने की आप कोशिश करें. जीवन साथी की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज आपका दिल खुश कर सकता है. बस वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल ना करें.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज का दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा. आसपास किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है लेकिन उसमें चुप रहना ही आज आपके लिए बेहतर रहेगा. नौकरी से जुड़े काम के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है. खोई हुई कोई प्रिय चीज मिलने से मन खुश हो जाएगा. वैसे कामों को बिना योजना के करने के बजाय सोच समझ कर आगे बढ़ें तभी सफलता मिलेगी.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आप सफलता की ओर मजबूत कदम बढ़ाएंगे लेकिन विरोधी आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश भी कर सकते हैं. मेहनत और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. संतान आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती है जिसे आप पूरी ईमानदारी से निभाते चलेंगे. दोस्तों में हंसी मजाक और मौज मस्ती भी अच्छा समय बिताएंगे आप लेकिन अनजाने लोगों पर ज्यादा भरोसा करने से बचें.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है इसीलिए अपनी वाणी और बिहेवियर पर खास ध्यान दें. किसी कानूनी मामले को लेकर तनाव बढ़ सकता है. कामकाज में पूरी सतर्कता रखें. ऑफिस में वरिष्ठों की बातों को नजरअंदाज ना करें. मनचाहा काम ना मिलने से थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन आप पेशेंट तो रहिए ना.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज आप पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना ही आपके लिए सबसे बड़ी साझे यानी कि समझदारी होगी. परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर चिंता बनी रह सकती है. इस बारे में बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

0: हमको टालने की आदत नुकसान दे सकती है, इसलिए समय पर जिम्मेदारियों को पूरी करें।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। बिजनेस से जुड़े किसी काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। जीवन साथी से ऐसी कोई बात ना करें जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो। पारिवारिक मामलों को मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि बाहरी लोगों की सलाह उलझन बढ़ा सकती है। बस समझदारी और संयम से ही दिन बेहतर रहेगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज का दिन सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का है। आपकी पहचान और सम्मान दोनों में वृद्धि होगी। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं जिससे मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों के साथ किसी बात पर हल्की नोकझोंक हो सकती है, इसलिए शांत रहना आपके लिए बेहतर रहेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपको अपनी कमाई और खर्चों के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा। बिजनेस में बदलाव करने से पहले हर पहलू को अच्छे से समझ लें। विदेश से जुड़े व्यापार करने लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप अपने रहन सहन में बदलाव लाने के लिए नए कपड़े या गहनों की खरीदारी भी कर सकती हैं। वैसे दान पुण्य और सेवा के कार्यों में भी आपका मन लगेगा।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, लेकिन आपको समझदारी और पेशेंस यानी कि आपको हर परिस्थिति में संभालेंगे। लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे और सामाजिक या हो फिर सामाजिक कार्यक्रम इनमें शामिल होने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में छोटी सी गलती के कारण डांट सुननी पड़ सकती है, दैट्स व्हाई सावधानी से काम करें। एंड परिवार में किसी सदस्य के रिश्ते की बात पक्की होने से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: लास्ट आज आपको अपनी बात बहुत सोच समझकर कहना जरूरी होगा, क्योंकि आपकी छोटी सी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर खुल सकते हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलने के अच्छे संकेत है। हालांकि परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। आपका कोई फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचे। गुड लक और हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

रोज 6 बजे जो समाचार पढ़ने वाले वो तो आज आएंगे, लेकिन आपका और हमारा साथ कभी ना छूटेगा। 5:56 माने की 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: 6 बजे है।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार आपको
1: नमस्कार राधा पेंशन प्रणाली में सुधार लाया जाएगा माहिरों के आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखा गया है अब बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगा वृद्ध पेंशन के लिए जो लोग योग्य होंगे उन्हें 60 साल से 70 साल के बीच पेंशन पाने का फैसला लेना पड़ेगा लाभार्थियों को पहचानने के लिए मींस टेस्ट किया जाएगा बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज राष्ट्रीय सभा में बहस सत्र शुरू प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर भी प्रस्तुत करेंगे सांसद मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों के लिए घोषित कदमों पर सवाल करेंगे गैर सरकारी संगठन नमूना चैरिटी ने बजट 2026-2027 में शिक्षा सामाजिक अखंडता और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे या खास जरूरतें पर

करने वाले बच्चों की मदद के लिए घोषित कदमों पर तसल्ली जताई। तंजीम के सीईओ सैमुअल कोयापेन के मुताबिक ये ऐलानात एक अहम कटिबद्धता दर्शाते हैं जो मॉरिशस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। हालिया बजट में मैटरनिटी को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई है इस पर संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन छोटे एवं मध्यम उद्योगों में राय अलग अलग है। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को 6 महीनों का पेड लीव मिलेगा और बाकी के 6 महीने उस पर निर्भर है कि वो लेना चाहेगी या नहीं, जिसकी आधी तनख्वाह प्राप्त की जाएगी और वो भी जो मालिक पर मुनहसिर है। कंपनी मालिकों का यही फिक्र है कि किस तरह कर्मचारियों को रिप्लेस किया जाएगा और कंपनी की गतिविधियों को जारी रखा जाएगा। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच एक अंतिम समझौता तय करने के लिए बातचीत अभी तक जारी है। बातचीत सत्रों में संलग्न अमेरिकी राजनयिक ने इस बात की पुष्टि की है 60 दिनों में एक जंग बंदी पर रजामंदी जतानी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल

0: आम हालत मुशरस में आज रात 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर हल्की बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर हल्की वर्षा होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरखास्त है। मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से सावधानी बरतने की मांग है। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 21 से 23, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45 बजे, सूर्यास्त 5:39 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब, शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio.

0: 2.
1: Radio Musti.
2: Tout kapavatan. Louvras, mazé, bois, sommeil, kapavatan.
3: Everything can wait. Watch all 104 games live on Supersport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DStv English Plus add-on with Canal Plus. Until the 30th of June, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Contractual period for 24 months plus current month. Offer subject to conditions, valid in Mauritius, VAT included. More info on Canal Plus stores and till shops and canalplus.com.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: आपके दिल की धड़कनों को और मदहोश करते हुए लेट मी विश यू ऑल वंस अगेन अ लवली मॉर्निंग. 6:10 होने वाले हैं. आपका स्वागत है रेडियो मस्ती की लहरों पर. बस अभी सूरज तो उगा नहीं है, लेकिन हाँ, आपके दिन की शुरुआत डेफिनेटली हो चुकी है विद रेडियो मस्ती. आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. टोनी जी फ्रॉम रोशबुआ, It's better to travel well than to arrive. That's very sure. Rakhu Jana Parivar, aapke naam hai. Dhuti ka aapke liye, my dear. Sweetie from Positive Lank, gaane aapke naam, aapke families ke liye bhi. Papa Bobby, aur aap rehte hain Sebastopol. Happy birthday to you from wife of Deepa. Beti hai Ojasvi, beta Lavesh. Aapki sasu maa Sita, sasur ji Devan, and sabhi parivar ki aur se aapko hardik shubhkamnaen. रेखा, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर. अंश, आपके बेटे के नाम, सोनम भोला एंड आपके पूरे परिवार के लिए भी. साथ ही साथ है रंजीत जी फ्रॉम प्लेंटी पपाई, आपकी लवली वाइफ प्रेमिला एंड सभी परिवार के लिए.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: शेवज कर 18 मिनट बहती हवाओं में चलिए आप ही उठते चले जा रहे हैं लेकिन बी वेरी केयरफुल तेज हवाएं हैं सर्दी का मौसम है और सर्दी का असर सबको पड़ा है तो बी वेरी केयरफुल एंड ड्राइव सेफली यहां पर 5499-1294 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू हेमा अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड पूरे परिवार के लिए आप है कौन यहाँ पर ओके कुमार देवीचंद जॉगिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक थैंक यू सो मच आपके लिए कविता प्यारी सी कविता गुड मॉर्निंग एंड इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू स्वीटी आपकी फ्रेंड्स अरिता अनीता एंड सबके नाम फर्स्ट बर्थडे टू बेबी रेहा संता कबलिस का लिए जयान जारा रबीश परिशा एंड नापाजू फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार हेलो जी नेक्स्ट गाना गुजार टू बलजो परिवार प्लेंदी पपाय से स्पेशली अंकिता राकेश सिद्धिता एंड अंकेश के नाम अनिकेश के लिए

पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की हम खबरें। पेंशन प्रणाली में नए सुधार को लागू करने के लिए योग्यता का जायजा लिया जाएगा, एक मींस टेस्ट किया जाएगा। बजट 2026-2027 पर आज से बहस सत्र शुरू, राष्ट्रीय सभा में प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर भी प्रस्तुत करेंगे। मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने पर जहां खुशी और राहत है, वहीं उद्योगों पर बड़ा दबाव होने का फिक्र है। एसएमई चैंबर का मानना है कि ये कदम घोषित करने से पहले उद्योगों से सलाह मशवरा करना चाहिए था। और अमेरिका तथा ईरान के दरमियान जंग बंदी पर बातचीत, समझौते की कुछ शर्तों पर स्पष्टीकरण पाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आदाब। अरब

0: अपनी तफसील से पेंशन प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है। माहिरों के आयोग की सिफारिशों के को मद्देनजर रखा गया। अब बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगा। वृद्ध पेंशन के लिए जो लोग योग्य होंगे उन्हें 60 साल से 70 साल के बीच पेंशन पाने का फैसला लेना होगा। लाभार्थियों को पहचानने के लिए एक मीन्स टेस्ट किया जाएगा। राजमिला अस्सीता मुनी की रिपोर्ट पर अशिता रघो का विवरण पेश है।
1: 1 जनवरी 2027 से रिटायरमेंट पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू किया जाएगा। इसके तहत मौजूदा लाभार्थियों को अब नई स्टेट एज पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन ये पेंशन अब मीन्स टेस्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसमें नौकरी से होने वाली आय, मकान किराए से मिलने वाली आय, पेशेवर गतिविधियों से आय तथा कंट्रीब्यूटरी पेंशन को भी पेंशन पात्रता के आकलन में शामिल किया जाएगा। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि सितंबर 2026 से अगस्त 2029 के बीच 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लोगों के लिए ट्रांजिशनल डिस्पोजिशन लागू रहेगी। ऐसे लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं या फिर इसे 70 वर्ष तक स्थगित करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष से पहले पेंशन प्राप्त करता है तो उसकी पेंशन में हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की कटौती की जाएगी। वहीं जो लोग 65 वर्ष के बाद पेंशन लेना टालेंगे उन्हें हर साल 9% तक की वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीएसजे रिटायरमेंट बेनिफिट को फिर से लागू किया जाएगा। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को स्टेट एज पेंशन में प्रति माह 1,000 रुपए से 2,500 रुपए तक की अतिरिक्त वृद्धि मिलेगी। सरकारी अनुमान के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 97% यानी 2,63,200 वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन को पूरी या आंशिक पेंशन मिलती रहेगी। जिनकी मासिक आय 14,001 रुपए से 50,000 रुपए के बीच है उन्हें कम पेंशन दी जाएगी। ये वर्ग लगभग 47,300 लोगों का है, जबकि जिनकी मासिक आय 50,000 रुपए से अधिक है वे अब पेंशन के पात्र नहीं होंगे। ये संख्या लगभग 8,600 लोगों की बताई गई है।
0: मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं है। श्रमिक संघ ने इसे एक नाइंसाफी करार दी है। एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष अनिफ पिहन ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है, बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सुधार पर MLC ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम आवाम की भलाई और फायदों से बहुत अलग है। प्रणव बिहारी, अशिता रघु।
1: मॉरिशस लेबर कांग्रेस ने सरकार द्वारा प्रस्तावित नई पेंशन व्यवस्था, जिसे मौजूदा बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लागू किया जाना है, को एक गंभीर सामाजिक अधिकारों पर चोट बताया है। संघ के अध्यक्ष हनीफ पीरन का कहना है कि इस सुधार के कारण कुछ लाभार्थियों की पेंशन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जबकि हजारों अन्य लोगों की पेंशन में भारी कटौती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ प्रभावित लोगों के लिए प्रस्तावित 1,000 रुपए की सहायता राशि उनके अनुसार एक अपमान है। संघ ने स्पष्ट किया है कि वह वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार के पास ऐसे अन्य विकल्प मौजूद हैं जिनसे सार्वजनिक खर्चों का वित्त पोषण किया जा सकता है बिना रिटायर्ड नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित किए। मॉरिशस लेबर कांग्रेस ने आगे कहा कि प्रस्तावित टारगेटिंग मैकेनिज्म अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। संगठन ने सरकार से इस सुधार को तुरंत रोकने, सामाजिक साझेदारों के साथ व्यापक परामर्श शुरू करने और एक अधिक न्याय संगत तथा अधिकार सम्मानित समाधान प्रस्तुत करने की अपील की है।
0: बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज से राष्ट्रसभा में बहस सत्र शुरू होंगे। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर प्रस्तुत करेंगे। सांसद, मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों और तबकों के लिए घोषित कदमों पर सवाल करेंगे। गैर सरकारी संगठन मुना चैरिटी ने बजट में शिक्षा, सामाजिक अखंडता और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे या खास ज़रूरतें पढ़ने वाले बच्चों की मदद के लिए घोषित कदमों पर तसल्ली जताई है। तंजीम के CEO सैमुअल कारियापेन के मुताबिक ये ऐलानात एक अहम कटिबद्धता दर्शाते हैं जो मॉरिशस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। उन्हें सुनते हैं, राजमिला सीतामुनी ने उनसे बात की।
2: Pour nous, c'est une très bonne orientation parce que

0: Sur le terrain, on voit énormément d'enfants qui ont des difficultés invisibles comme la
1: हमारे
0: dyslexie,
1: लिए ये एक बहुत
0: etc.
1: अच्छी
0: Je
1: दिशा की
0: pense
1: ओर
0: que
1: हम
0: c'est
1: बढ़
0: une
1: रहे
0: bonne
1: हैं,
0: raison
1: क्योंकि
0: pour
1: जमीनी
0: laquelle
1: स्तर
0: le
1: पर
0: gouvernement
1: ऐसे
0: peut
1: बहुत बच्चे हैं
0: malheureusement
1: जो
0: faire
1: अंदरूनी
0: face à
1: मुश्किलों
0: cette
1: का
0: situation.
1: सामना कर रहे हैं,
0: Les
1: जैसे
0: accompagner
1: डिस्लेक्शिया,
0: doit être une
1: एडीएचडी,
0: bonne chose pour
1: न्यूरोलॉजिकल
0: l'enfant.
1: डाइवर्शन तथा अन्य और।
0: Pour
1: दुख की
0: l'enfant
1: बात ये
0: malheureux,
1: है कि
0: si
1: इन
0: l'enfant
1: बच्चों का
0: vulnérable
1: जल्द
0: n'a pas
1: पता
0: les
1: नहीं
0: moyens
1: चलता है।
0: d'éducation, ça se rattrape
1: इस
0: pas.
1: दौरान
0: Donc c'est
1: स्कूली
0: toujours
1: स्तर
0: des
1: पर ये
0: éducateurs qui
1: पीछे
0: sont
1: रह जाते हैं
0: toujours
1: और इसके पीछे का कारण
0: derrière.
1: भी इन्हें
0: Donc
1: नहीं
0: c'est
1: पता
0: toujours
1: होता।
0: l'école qui fait
1: मॉरिशस में गरीब
0: l'école.
1: बच्चों की सहायता
0: Les
1: करती
0: écoles,
1: है
0: les institutions.
1: जिनके पास ट्यूशन के लिए साधन नहीं। फिर मानसिक सहायता भी हम प्रदान करते हैं। शिक्षा मंत्रालय व एनईएफ की ओर से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। इसके साथ साथ चंद स्कूल व संस्थाएं भी शामिल हैं।
2: हालिया बजट में मैटरनिटी को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई है उस पर बहुत संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन छोटे एवं मध्यम उद्योगों में राय अलग अलग है। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को 6 महीनों का पेड लीव मिलता है और बाकी के 6 महीने उस पर निर्भर हैं कि वो लेना चाहेगी या नहीं, जिसकी आधी तनख्वाह प्राप्त की जाएगी जो मालिक पर मुनहसर है। कंपनी मालिकों का यही फिक्र है कि किस तरह कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव के दौरान रिप्लेस किया जाएगा, वो भी कंपनी की गतिविधियां बरकरार रखकर अतिरिक्त दामों का सामना करते हुए। एसएमई चेंबर के मुताबिक एक साल की मैटरनिटी लीव से कर्मचारियों के संचालन में दिक्कतें होंगी और उद्योगों का बोझ भी बढ़ जाएगा। एसएमई चेंबर की उपाध्यक्षा माया सेवनाथ ने आशी बच्चू से बात की, उन्हें सुनते हैं आशिता रघु की जबानी।
3: C'est un petit peu choqué parce qu'il n'y a pas qu'un consulté qui que ce soit avant de prendre une décision pareille. Les aides de main s'immobilisent en
1: हम आश्चर्य में हैं क्योंकि ये फैसला लेने से पहले किसी से भी परामर्श नहीं किया गया। मतलब ये होता है कि यदि कल एक 20 से 40 वर्ष की उम्र के बीच की एक महिला को नौकरी के लिए भर्ती किया जाता है और इसके दौरान वह गर्भवती हो जाती है, तो हमें इसका भी प्रावधान करना होगा कि वह एक साल के लिए नौकरी पर नहीं आएगी तथा उस महिला को रिप्लेस करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को ढूंढना होगा। ऐसे में क्या कोई भी व्यक्ति केवल एक साल के लिए नौकरी करने के लिए आएगा जिसके बाद उसे बाहर निकाला जाएगा, विशेषकर यदि वह व्यक्ति काफी अनुभवी है, तो ऐसे में उसके साथ अन्याय होगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। अतः मालिक के पास एक विकल्प चुनना होगा, विशेषकर 20 से 40 वर्ष के बीच की महिलाओं को भर्ती करने से पहले।
2: रेजवी ट्रायंगल में मुर्शिद सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से बहुत जल्द सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण आरंभ कार्य आरंभ होने वाला है। इस संदर्भ में आज शिलान्यास विधि यानी कल शिलान्यास विधि एवं भूमि पूजा का भव्य आयोजन किया गया। सनातन धर्म के हितधारक और अनुयायियों ने इस धार्मिक समारोह में भाग लिया। सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य 2 बीघा जमीन व 1500 वर्ग फुट पर विस्तृत होगा। करुणा लालू।
4: रेजू में सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के परिसर में 2 बीघा जमीन पर सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 15,000 वर्ग फुट का एक बृहद हॉल जहां फेडरेशन की गतिविधियां चलाई जाएंगी। भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत से पहले आज भूमि पूजा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य निर्माण स्थल को शुभ बनाना और कार्य की सफलता पूर्वक पूर्णता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना रहा। भूमि पूजन से पूर्व मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से यज्ञ भी किया गया। इसमें गुरुकुल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अवसर पर कई महानुभाव उपस्थित रहे। सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा, सनातन वाटिका की योजना वर्तमान कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले साकार कर दी जाएगी। भोजराज गुड़बिन ने इस वास्ते सभी लोगों के सहयोग एवं समर्थन की मांग की।
5: उसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है, जिते वचन कठोर। जो वचन हम लोगों ने लिए थे, हमारी टीम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के टीम ने जो वचन लिए थे, आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। ये हॉल 100% ये हॉल बनेगा।

0: 2029 से पहले ये होल हमारा लक्ष्य है, ये बनना ही चाहिए।
1: मुख्य अतिथियों में भारत से आए डॉक्टर श्री राजर्षि भूपेंद्र मुल्दी जी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी हिंदुओं को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को धार्मिक पुस्तकें भी भेंट की। उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से दीगर कैटेगरियों में कौमी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। दर्जा 7 से दर्जा 13 के करीब 170 बच्चों ने हिस्सा लिया। फाइनल्स 15 जून को इस्लामी सकाफती सेंटर पोटली में लगे। तलबा ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से जबान की रवानी, खूबसूरत लहजा और तलफ्फुज और निराले अंदाज में अपनी काबिलियतों को उजागर किया। पेश है फाइनल्स की रिपोर्ट शहजाद जुमन की जबानी।

0: परफॉर्म करने से पहले जो हिचकिचाहट होती है और जो डर लगता है, स्टेज पर आकर बेबाकी से उन्होंने अपनी काबिलियत और जबान की शायस्तगी को आम किया। इन नई नस्लों ने अपनी कम उम्र के बावजूद काबिलियत परफॉर्मेंस दिया।
1: 12 मार्च 1968
2: अजीब लोग हालात के मोहताज नहीं होते बल्कि वो खुद हालात को बदल देते हैं।
0: ड्रामेबाजी, तकरीर, बैतबाजी और न्यूज रीडिंग में इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुल्क के दीगर स्कूलों और कॉलेजों से कुल 167 एंट्रीज मिले थे, जिनमें 17 फाइनलिस्टों का इंतखाब किया गया।
3: मैंने पहली बार इस मुकाबले में हिस्सा लिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं फाइनलिस्ट में शामिल हूँ।
4: मैं पहली बार उर्दू में स्केच कर रहा हूँ। इस मुकाबले से मैं उर्दू बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ।
5: इस बेबासी कंपटीशन में हिस्सा लेकर मुझे बहुत से उर्दू अशआर सीखने का मौका दिया, जो मेरे इम्तिहानात के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये मेरे उर्दू जबान को बेहतर बनाती हैं।
0: इस साल उर्दू स्पीकिंग यूनियन जबान को फ़रोग देने के लिए एक तब्दीली लाया। पहली दफ़ा मुल्क में न्यूज रीडिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। मकसद रोजमर्रा जिंदगी के हालात को उर्दू जबान में समझना, दूसरों तक पहुंचाना और बच्चों को उर्दू में बोलने और ख्याल करने की हिम्मत देना है।
1: नाज़रीन, अब बैन-उल-अक़वामी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आलमी सतह पर ईरान और अमरीका के माबेन जंग का सिलसिला जारी है। अहम सुर्खियां, मॉरिशस में सफाई और शजरकारी मुहिम का आगाज, कई ममालिक में शदीद गर्मी की लहर। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में दुनिया भर की टीमें मसरूफ। स्कूलों को जदीद आलात और वसाइल फराहम किए जाएंगे जो तलबा की दर्स व तदरीस में काफ़ी मुफीद साबित होंगे।
6: न्यूज रीडिंग के जरिए तलबा अपनी उर्दू जबान, तलफ्फुज और रवानी को बेहतर बनाते हैं और कौमी और बैन-उल-अक़वामी हालात से भी बाखबर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छे तालिबे इल्म के लिए तालीम के साथ साथ हालात हाजरा से भी आगाही ज़रूरी है।
1: मोहतरम नाज़रीन, आज बरोज पीर 11 में है और आप देख रहे हैं सदाए वतन।
0: न्यूज रीडिंग में कोची मिलती एसएसएस की तालिबा हानिया गमजुन ने बाजी अपने नाम की। बाबा कौम सर सिव सागर राम गुलाम पर तकरीर के मुकाबले में धोबना थामफुल स्टेट कॉलेज की सबीहा ईदू अव्वल आई। स्केच में मोहन लाल मोहित सरकारी स्कूल की जीत हुई और बैतबाजी का ताज दीवाना ग्रुप को गया।
7: लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित एक नई मौत दर्ज हुई है। स्टैनली रोजिल की 78 वर्षीय महिला नहीं बच सकी। 16 जून को कॉन्डस के विक्टोरिया अस्पताल में उनकी भर्ती की गई। सूत्रों के मुताबिक बागबानी के दौरान उन्हें ये बीमारी लगी होगी। अब तक लेप्टोस्पायरोसिस के 27 मामले दर्ज हो चुके हैं और कुल 7 लोगों की मौत हुई है। अधिकारी सभी तरह की सावधानी बरतने की मांग कर रहे हैं, खासतौर पर बागबानी या बाहर के काम करते हुए पानी या कीचड़ से दस्ताने और अच्छे जूते पहनने का मशवरा दिया जा रहा है। बुखार, बदन में दर्द या बेआरामी होने पर डॉक्टर से फौरन मुआयना करवाने की मांग की जा रही है। विदेश की खबरों में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर के स्टॉर्मर के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा

दबाव हैं, उनके इस्तीफे के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। पिछले हफ्ते मेकरफील्ड के बाई इलेक्शन में एंडी बर्नहम की जीत के बाद लेबर पार्टी के लीडर को लेकर उनके लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी को आखिरी रूप देने के लिए बातचीत जारी है। स्विट्जरलैंड में उच्च सतह वाला सत्र लग रहा है। पिछले हफ्ते दोनों मुल्कों ने अमन कायम करने के मकसद से आपस में समझौता तय करने पर रजामंदी जताई थी, वो भी 60 दिनों के अंदर अंदर। बातचीत कुछ धुंधली शर्तों पर स्पष्टीकरण लाने के लिए की जा रही है, खासतौर पर अब ना ये हॉर्मूज को दोबारा खोलने के सिलसिले में। दक्षिणी लबनान में हमलों को भी बंद करने का शर्त है और परमाणु समझौते के भी पहलू शामिल हैं। और अब फुटबॉल विश्व कप पर ये खबर, स्पेन ने सऊदी अरेबिया को 4-0 से हराया है। बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया मैच ड्रो रहा, यानी किसी की भी जीत नहीं हुई है। यूरुग्वे और काबोवेद का मैच भी ड्रो रहा है, स्कोर 2-2 रहा। न्यूजीलैंड और इजिप्ट का मैच अभी चल रहा है और इजिप्ट 3-1 से न्यूजीलैंड को हरा रहा है। आज रात अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा और कल यानी रात के 1 बजे फ्रांस और इराक के बीच मैच खेला जाएगा।

अब करते हैं मौसम की बात। मुर्शिद में आज रात 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है। मस्केरेंस के दक्षिण पश्चिम में जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चलेंगी अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, हवाई ढलानों पर हल्की बारिश होगी और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर खास तौर पर हल्की वर्षा होगी। हवा दक्षिण की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगून के उस पार समुद्र निहायत ही खराब रहेगा। 4 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाली लगूनों में। इसी वजह से सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जा रही है। मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से सावधान रहने की मांग है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 21 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 5:39 पर।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। पेंशन प्रणाली में नए सुधार को लागू करने के लिए योग्यता का जायजा लिया जाएगा, एक मींस टेस्ट किया जाएगा। बजट 2026-2027 पर आज से बहस सत्र शुरू। राष्ट्रसभा में प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर भी पेश करेंगे। मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने पर जहां खुशी और राहत है, वहीं उद्योगों पर बड़ा दबाव होने का फिक्र है। एसएमई चैंबर का मानना है कि ये कदम घोषित करने से पहले उद्योगों से सलाह मशवरा करना चाहिए था। और अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर बातचीत, समझौते की कुछ शर्तों पर स्पष्टीकरण पाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभागों और हमारे तकनीकी साथी कार्य कुदारिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। शोक समाचार सुनिए।

शोक समाचार सुनिए रिचलियो ब्रांच रोड कोरोमंडल में रिचलियो ब्रांच रोड कोरोमंडल में 89 साल के 89 years old श्री विद्यानंद सोमू जो पूर्व पुलिस कॉर्पोरल थे और आनंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं और थी आज सवा दो बजे इनके घर रिचलियो ब्रांच रोड कोरोमंडल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट क्वार्टर पोस्ट 2 PM कालीमाई रोड रिविया जोरों पर 63 साल के 63 years old श्री राम प्रकाश मथुरा

श्री राम प्रकाश मथुरा की मृत्यु हो गई है अर्थी आज सवा बारह बजे इनके घर काली माई रुद्रिया जोंपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट हाफ एट क्वार्टर पोस्ट नून एवेन्यू पॉवर विलमेर कौटी मिली थी हमें 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुमित्रा रामसरन कैलाशी नाम भीका जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके पति बिसुन बागीवान के रामसरन के घर एवेन्यू पॉवर विलमेर कौटी मिली थी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमेर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड मोताई ब्लॉन्च में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री हंसराज बरन जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज ढाई बजे के घर रॉयल रोड मोताई ब्लॉन्च से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉन्च की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM NHDC पोस्ट टू फ्लैक में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री धर्मेंद्र बंधु जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे इनकी पत्नी पार्वती बंधु के घर NHDC पोस्ट डू फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलेमोंग पोस्ट डू फ्लैक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM राम गुलाम रोड अपरवेल में 34 साल की 34 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सरिता रामबरन जो स्वीटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनकी माँ दालामती रामबरन के घर राम गुलाम रोड अपरवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैपमालोय की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM मोरिस रोड मेबर्ग में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती दनवतिया गोपी पैदाइशी नाम जीवुत जो छुटकी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज साढ़े बारह बजे इनके बेटे इंद्रदेव गोपी के घर मोरिस रोड मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो में बग की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 ट्राइंगल गुडलैंड्स में 69 साल की के 69 ईयर्स ओल्ड श्री देवानादा पालानी जो सिवा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थे आज 12 बजे इनकी पत्नी माधुरी पालानी के घर ट्राइंगल गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून महात्मा गांधी रोड पिछी राफ्री में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुभावती जागेसौ पैदाइशी नाम अरुणाचलम जो ललिता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो हमारी सहयोगी दिया जागेसौ की माँ थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज एक बजे इनके बेटे संजू जागेसौ के घर महात्मा गांधी रोड पिचिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्कल पिचिराफ्रे की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM आर्या मंदिर रोड गुडलैंड्स में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड श्रीमती घनवंती सिगुलन पैदाइशी नाम लुलमान जो सुभावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 11 बजे इनके बेटे शैलेश सिगुलन के घर आर्या मंदिर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM बिसुनरियाल लेन नौसेनाल में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड श्री राजलाल दीना जो मिकेल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे इनके बेटे यमराज दीना बिसुंडिया के घर बिसुंडिया लेन और सेनार से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टियामिन्यूस ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM पायलट स्ट्रीट जुबॉय में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री धनपत पांड्या जो धन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं

0: शनिवार थी आज सुबह 9 बजे आज सुबह 9 बजे इनके घर पायलट स्ट्रीट जुबोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9 एएम ओफ्रेर लेन मेबर्ग में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड श्रीमती फुलमत लोलित पैदाइशी नाम टीपू जो फुलमत के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं अर्थ है आज दो बजे इनकी बेटी सीता लोलित के घर ओफ्रे लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM ला मैरी रोड कैस कांटो वाकवा में 48 साल की 48 इयर्स ओल्ड श्रीमती नताशा हरनंगी जो ताशा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं अर्थ है आज 11 बजे इनके घर लामाही रोड कैस कांटो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अंगयेता वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM डॉक्टर फेरिया स्ट्रीट ट्रेफल रोजिल में 73 साल के 73 इयर्स ओल्ड श्री दयानंद दीपदयाल जो दया के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थ है आज ग्यारह बजे इनके बेटे अंजय दीपदयाल के घर डॉक्टर फेरिया स्ट्रीट ट्रेफल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लिव्यू की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रोमेशन टुडे एट 11 AM बास्ताई रोड कथबोन में 97 साल के 97 इयर्स ओल्ड श्री इस्नू डीओजी जो गौसों के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं अर्थ है आज डेढ़ बजे इनके घर बासाई रोड कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: टाइम चेक सुबह के ठीक 7 बजे है।
3: कमजी वाला मशीरा, एक फॉर्मलेन नुगेयों को बुकु प्लीज।
4: मॉर्निंग बीट।
0: RM2 Radio Musty in the mix.

0: डोंट बी साई माई हानी. क्या गाने वाह वाह वाह वाह. गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:08.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: भाई मानो या ना मानो, मॉर्निंग में जो गाने होते हैं ना, सच में हमारी ज़िंदगी में पता नहीं मिठास ले आते हैं, प्यार ले आते हैं, एनर्जी ले आते हैं. कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद हमें इतनी खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, उस गाने में ढल जाते हैं, फिर पूरे दिन उस गाने को आप गुनगुनाते रहते हैं. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम. 22 जून हो गया, ओ माई गॉड, इट्स अ लवली मंडे. बाय द वे, थोड़ी ठंड ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा सोने का मन करता है, लेकिन ज्यादा करते करते ना स्नूज बटन भी कुछ ज्यादा ही चला जाता है. फिर उसके बाद आपको बताएं जो भागा डौरी होती है ना, इसलिए अभी देखो ज्यादा लेजी मत बनो, उठ जाओ. और कितने सारे लोग तो अभी काम पर चले भी गए होंगे, कितने सारे लोग अभी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं काम पर जाने के लिए, और कितने सारे लोग हैं जो इस समय जॉगिंग कर रहे हैं. तो चलिए आप सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए. आज का ये जो मंडे मॉर्निंग है, इस वीक की शुरुआत हम करेंगे जरूर. वैसे मॉर्निंग में तो इतने सारे गाने चले आपके लिए, खुश तो आप वैसे भी होंगे, थोड़ी सी खुशी हम भी बांट लेते हैं आपके साथ. मैं हूं वेदिता, आपके मॉर्निंग बीट में साथ रहूंगी मैं सुबह के 9 बजे तक.
1: मॉर्निंग बीट,
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: Love the beat, love the music. Hello, good morning and welcome. स्वागत है आप सबों का हमारे प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग बीट. अब मॉर्निंग में ऐसे ऐसे गाने चलेंगे तो भाई वाह क्या बात है, मूड एकदम सेट हो जाता है ना. आप लोग भी अभी वीकेंड के बाद सोच रहे होंगे कि भाई मॉर्निंग अभी क्यों आता है ये मंडे. मंडे इसलिए आता है क्योंकि हमें अपना मन लगाना होता है, क्योंकि पूरा वीक होता है ना आगे खींचने के लिए. तो इसको आप टेंशन लेके चलोगे तो ये हमेशा आपके लिए टेंशन क्रिएट करेगा. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ में जो भी मिले हाथ जोड़ के बोलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. चलो इसका हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसको बेटर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में सोचो ना कि ये सोचो मंडे है काम पे जाना पड़ेगा, फिर वही करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा. भाई तो काम करते हो तो उस सैलरी के बारे में भी तो सोचो. एंड ऑफ द मंथ जो आपको मिलता है उसी के लिए तो हम काम करते हैं, है ना. लेकिन जिस काम में आपका मन ना लगे ना तो वहाँ पर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, तभी वो बोझ लगने लगता है. लेकिन जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हो, बाकी कुछ भी हो बस काम में कंसंट्रेट करो, कोई आपसे बात करे ना करे, कोई आपसे जले ना जले, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, उन सब पे ध्यान ही मत दो, बस काम पे कंसंट्रेट करो. जैसे कि अभी मैं ये कंसंट्रेट कर रही हूँ कि थोड़ी देर में अपना बर्थडे ऑफ द डे होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप लोग किसी को अगर सरप्राइज करना चाहते हो प्लीज सेंड मी उनका नाम और उनका फोन नंबर. नंबर आपको पता ही है 5499-1294.

0: रहेगा। एंड नूरव के लिए लुलु खैबा मार्केट की तरफ से एक वाउचर है जो आप आज नहीं तो कल जाके कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको MBC आकर पहले वाउचर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच नूरव, आई विल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर डे बेटा, थैंक यू, बाय
1: बाय।
2: मॉर्निंग बीट,
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
2: a good beat for your morning show.
4: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: अरविन चलिए बताएं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लेटेस्ट खबरें क्या है।
1: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। केप वर्दे का सुहाना सफर ड्रीम रन जारी है और इजिप्ट टॉप पोजीशन पर। स्पेन को रोकने के बाद इस बार यूरुग्वे को टोका। अफ्रीका के द ब्लू शार्क्स इस बार यूरुग्वे के खिलाफ ड्रॉ कर पाए 2-2, मतलब 2 ड्रॉ मैच, और स्पेन के खिलाफ ड्रॉ मैच कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि यूरुग्वे के खिलाफ ड्रॉ मैच से साबित कर दिखाया कि इनको हराना आसान नहीं है। केप वर्दे अटलांटिक ओशन में 10 छोटे द्वीप यानी आइलैंड आर्किपेलागो, केवल 525,000 लोगों का केप वर्दे वर्ल्ड कप में अपना छाप छोड़ रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। स्पेन की आसान जीत 4-0 से सऊदी अरेबिया के खिलाफ। पहला गोल लामिन योयोज़ाबाल का डबल, फर्स्ट हाफ में 3-0, सेकंड हाफ में हसन एल तंबाक्ती का एक ऑन गोल, स्पेन 4-0 से जीत गया। उसके पास है 4 अंक, नॉर्वे के पास, यूरुग्वे के पास 2 अंक, केप वर्दे के पास 2 अंक, सऊदी अरेबिया के पास केवल 1 अंक है। कल सुबह जापान ने 4-0 से ट्यूनीजिया को हराया था। बेल्जियम फंस गया ईरान के खिलाफ ड्रॉ मैच 0-0, ये दूसरा ड्रॉ मैच है बेल्जियम के लिए। आखिरी मैच में बेल्जियम खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, ईरान वर्सेस इजिप्ट। इजिप्ट ने अभी से कुछ समय पहले 3-1 से न्यूजीलैंड को हराया। फर्स्ट हाफ में न्यूजीलैंड का गोल रहा सुरमान के जरिए, सेकंड हाफ में मुस्तफा जीको ने इक्वलाइज किया, फिर मोहम्मद सलाह ने स्कोर किया। तीसरा गोल सलाह के पास पर ट्रेजेगे ने स्कोर किया। आज रात 9 बजे अर्जेंटीना खेलेगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ये ग्रुप जे वाला मैच है। ग्रुप आई में 1 बजे फ्रांस वर्सेस इराक, फिर कल सुबह 4 बजे नॉर्वे का मुकाबला सेनेगल से, और सुबह 7 बजे जॉर्डन वर्सेस अल्जीरिया। क्रिकेट टीम इंडिया का युवा सेंसेशन 15 साल का वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में वैभव ने हाफ सेंचुरी केवल 11 गेंदों में बनाया, 11 बॉल 50। ये लिस्ट ए 50 ओवर क्रिकेट में पहली बार हुआ है। 94 रन बना पाया वैभव। फाइनल में टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराया। और टेनिस में ATP क्वींस चैंपियनशिप के फाइनल में सेरुंडोलो ने फाइनल में पोल को हराया। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। RM2 पर फिर हमारी मुलाकात होगी, दैट विल बी एट 8:34 द वर्ल्ड कप स्पेशल। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक।
0: Thank you so much, Arvind.
2: Mega promo code quality déco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Puis cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

0: छोटी सी तो जिंदगी है, कितना टेंशन लोगे भाई। टेंशन को दूर भगाओ, हमारे म्यूजिक के साथ जुड़ जाओ, खुश रहो। खुश रहोगे तो आसपास के लोग भी खुश होंगे। जितना हो सके खुशियां बटोर लो, जितना हो सके खुशियां बांट लो।
1: A good beat for your morning show. RM2 Radio
0: Musti. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई, कहते हैं कि खुशियां बटोर लो, क्या बिकता है जो हम खरीद ले। वही तो प्रॉब्लम है कि आप समझते नहीं हैं कि खुशियां जो होती हैं वो बिकती नहीं है, और इसको खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। आप कुछ पल के लिए कुछ ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो शायद आप विश करते थे कि हाँ भाई, मुझे ये बहुत बड़ी जो गाड़ी है, मुझे ये गाड़ी चाहिए थी, आपने खरीद लिया, वो खुशी मिल गई आपको। फिर ये खुशी कब तक टिकती है, नहीं पता नहीं ना। इसलिए कहते हैं खुशियां जो है छोटी छोटी होनी चाहिए, और इससे बटोरना आपका काम है, इसको क्रिएट करना आपका काम है। किसी को देखकर गुड मॉर्निंग बोलना, किसी का पीठ थपथपा देना और बोलना ए डोंट वरी, होता है, सब ठीक हो जाएगा, तो वो जो स्माइल आपको देते हैं ना, ये होती है छोटी छोटी खुशियाँ। चलो एक बात मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी लोग जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। वो कहते हैं कि भाई हमारा तो कुछ नहीं होगा। जब आप खुद अपने आप से कहते हो ना हमारा कुछ नहीं होगा, तो सच में कुछ नहीं होगा। ऑडियंस जो है ना जोकर को

पास जोकर देखता है, लेकिन जोकर अपने आप को क्या देखता है, वो देखता है कि वो एक परफॉर्मर है. तो नो मैटर व्हाट अदर्स थिंक, इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू गो ऑन विद कॉन्फिडेंस. बात आई समझ में तो मुस्कुरा देना. और एक मैसेज 549124 पर मिलते हैं समाचारों के बाद, जो आप सुनेंगे थोड़ी देर में.

आवाजा समाचार सुने जा। बजट 2026-2027 के पेशकश के बाद आज से राष्ट्रसभा में बहस सत्र शुरू हो वेला। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 के दूसर पहर पर प्रस्तुत करेला करियंजा। सांसद मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालय खातिर घोषित कदम पर सवाल करेला। मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नैबा। श्रमिक संघ ई है के नाइंसाफी बताए लेला। एगो विज्ञप्ति में अध्यक्ष हनीफ पीगन कहेला कि नवा पेंशन प्रणाली से एगो सामाजिक बुनियाद पर असर परता और बहुत से बुजुर्ग पर प्रभाव परता। हालिया बजट में मैटरनिटी के लेके जन बड़ा घोषणा करल गल बातें ए पर बहुत संतुष्टि जताई लेबा, लेकिन छोटे व मध्यम उद्योग में राय अलग अलग बातें। बच्चा लड़का के जन्म देने के बाद माँ के 6 महीना के पेड लीव मिला था और बाकी के 6 महीना उस पर निर्भर बा कि ऊ लेना चाहे या नहीं। जेकर आधी तनख्वाह प्राप्त करे जा सकियन जुन

0: मालिक पर मुनहसिर बातें, कंपनी मालिक के यही फिक्र बातें कि किस तरह कर्मचारी लोग के मैटरनिटी लीव के दौरान रिप्लेस करे सकें जा, वो भी कंपनी के गतिविधि बरकरार रख के अतिरिक्त दाम के सामना करते हुए। लिप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित एगो नवा मौत दर्ज होवेला। स्टैनली रोजिर के 77 वर्षीय महिला नहीं बच सकेला। 16 जून के कॉन्डोस के विक्टोरिया अस्पताल में ओकर भर्ती करल गल। विदेश में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के आखिरी रूप देवे खातिर बातचीत जारी बा। स्विट्जरलैंड में उच्च सतह होला सत्र लगेला। गत हफ्ता दोनों मुल्क अमन कायम करे के मकसद से आपस में समझौता तय करे पर मंजूरी जतैलन बा। तो ये रहल समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio

0: A very good morning, सुबह के 8:08 हो रहे हैं. आज है 22nd of June, मंडे का दिन. मन लग गया आपका?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसके साथ सिर्फ हमारी बॉडी नहीं बल्कि हमारा मन झूमने लगता है. और आज का दिन तो ऐसा लग ही रहा है कि काफ़ी प्लेजेंट होने वाला है और सुबह की हवा में थोड़ी फ्रेशनेस और भी बढ़ गया है. आज उम्मीद करते हैं कि टेम्परेचर कंफर्टेबल होना ज़रूरी है. और बाकी जो है ये चाहते हैं कि जो लोग घर से निकल रहे हैं, प्लीज़ अपनी पानी की बॉटल मत भूलना और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड भी दोनों को साथ में लेकर चलना. और बाकी आज का दिन कैसा रहेगा ये जानने के लिए चलिए मिलते हैं सुमेरा से.
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: आम हालत मुर्शस में आज रात 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है. मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर हल्की बारिश होगी. दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा. आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और हवाई ढलानों पर हल्की वर्षा होगी. हवा दक्षिण की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा. दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी. इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरख्वास्त है. मछुआरों, स्कीपरों और आम जनता से सावधानी बरतने की मांग है. तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 21 से 23, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 5:39 पर.
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Jouez, marquez et gagnez. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés et retrouvez tous vos indispensables pour vivre le match à petit prix chez Winners. Snacks, boissons, ambiance, entre amis ou en famille, vivez toute l'émotion du match et repartez gagnant. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
5: On est tous winners!

0: prête au défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों जब तक जीत ना मिले तब तक हार मत मानो क्योंकि अक्सर लोग उस वक्त गिव अप कर देते हैं जब सक्सेस उनके सिर्फ एक कदम दूर होती है। जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स भी मिलेंगे और कभी कभी लगेगा कि सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन याद रखिए हर सक्सेसफुल इंसान ने मुश्किल वक्त देखा है। फर्क इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। अगर आज आपका गोल बड़ा लग रहा है तो बस एक और स्टेप लीजिए। अगर थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, लेकिन गिव अप मत कीजिएगा क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती और मेहनत करने वालों को हमेशा उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। तो स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और याद रखिए विनर्स वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, विनर्स वो होते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते।
0: Avant tout défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: You're listening to RM2, a Radio Must See.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: You're listening to Radio Musti, of course. ये है आपका morning beat विदिता के साथ. दोस्तों, कभी कभी हम लोग दूसरों को खुश करने में, expectations पूरी करने में या हर situation को control करने की कोशिश में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी खुशी और सुकून को भूल जाते हैं. याद रखिएगा, हर एक argument जीतना जरूरी नहीं होता, हर किसी को impress करना जरूरी नहीं होता और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज ही मिल जाए ये जरूरी भी नहीं होता. कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, सेटल होने में टाइम लगता है. तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रेस ना ले. चले भाई, आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए गाना कुछ ऐसा हम चलाएंगे जिससे थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है ना मूव हो जाएगी. यानी कि हम यही चाहते हैं कि मॉर्निंग में आप खुश रहो और मॉर्निंग की जो खुशी होती है ना ये पूरे दिन रहता है. यकीन ना हो तो अभी इस गाने पर डांस करके देख लो.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2 Radio.

0: good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musti.
2: चलिए आपके लिए थोड़ी देर में स्पेशल वर्ल्ड कप की अपडेट्स लेकर आ रहे हैं अरविंद. अभी के लिए थोड़ी मस्ती और हो जाए. जहां से भी साथ दे रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर मैसेजेस ऑन 5491294.

0: आप भी किसी की तलाश में हैं?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: You're listening to Radio Masti Vedita के साथ की है आपका मॉर्निंग बीट. मॉर्निंग में मूड अच्छा होना चाहिए, जरूरी होता है. तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा प्यारा सा गाना होने वाला है, डेडिकेट करेंगे हम विकास जी आपके लिए. और आज वैसे आपका बर्थडे है, तो आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी पुप्पू चाचा चाची सबकी तरफ से आपको बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार है. और वहीं पे हम दीशिका हितन को भी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, जो क्लेमौशा से हैं. उनके मम्मी पापा भाई पूरी फैमिली की तरफ से विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे. आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत खास हो. आप लोगों के जो सपने आपने

देखे हैं, बस वो सपने आप पूरे करें और मेहनत थोड़ा लगेगा है सपने पूरा करने के लिए, तो मेहनत कीजिए, काम कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इट्स टाइम फॉर सम मोर म्यूजिक राइट हियर आपके अपने रेडियो मस्ती पर।

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन।
3: एंड यस, वर्ल्ड कप मैगजीन के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद। चलिए उनसे मिलते हैं।
4: स्पेशल होने वाला है, स्पेशल बन गया है। 92 ईयर वेट ओवर, 92 साल बाद इजिप्ट की पहली जीत वर्ल्ड कप में और पहली बार मोहम्मद साला की टीम नॉकआउट राउंड में। आज जीत हुई 3-1 से न्यूजीलैंड के खिलाफ, इजिप्ट ऑन टॉप। केप वर्दे का भी सुहाना सफर जारी है, ड्रीम रन जारी है। स्पेन को रोकने के बाद इस बार उरुग्वे को टोका। अफ्रीका के द ब्लू शार्क्स इस बार उरुग्वे के खिलाफ ड्रॉ कर पाए 2-2, मतलब इनके पास 2 अंक हैं 2 ड्रॉ के बाद। केवल 525,000 लोग रहते हैं इस देश में, पर कमाल कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। स्पेन की आसान जीत 4-0 से सऊदी अरेबिया के खिलाफ, इसमें लामिन यमाल का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा। सो स्पेन 4 अंक के साथ आगे है, उरुग्वे आता है दूसरे स्थान पे। केप वर्दे के पास भी 2 अंक है, सऊदी अरेबिया के पास 1 अंक है। एक हिस्टोरिक क्वालिफिकेशन केप वर्दे का इंतजार कर रहा है। कल सुबह जापान ने 4-0 से ट्यूनिजिया को हराया था। बेल्जियम फंस गया है ईरान के खिलाफ, ड्रॉ मैच 0-0। ये दूसरा ड्रॉ मैच है बेल्जियम के लिए। आखिरी मैच बेल्जियम वर्सेस न्यूजीलैंड और ईरान का मुकाबला इजिप्ट से होगा। कई वर्ल्ड कप रिकॉर्ड टूटेंगे आने वाले मैचों में। रिकॉर्ड आर प्लेंटी, लुक रेडी टू फॉल। लियोनेल मेसी 1 गोल स्कोर करके वर्ल्ड कप का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बन जाएगा। आज अर्जेंटीना खेल रहा है, फ्रांस का लीडिंग गोल स्कोरर किलियान एम्बापे ज्यादा दूर नहीं है, हैरी केन 4 गोल पीछे है। इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर हो सकता है गैरी लिनेकर के रिकॉर्ड को तोड़ के। और इसके अलावा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रेड कार्ड भी दिए जा रहे हैं। जीजे देशों मैनेजर के रूप में मोस्ट विन इन वर्ल्ड कप, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटेंगे और नए रिकॉर्ड बनेंगे इस वर्ल्ड कप में। फाइनली आज के फिक्स्चर्स पर एक नजर डालते हैं। आज रात 9 बजे अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया, ये ग्रुप जी का मैच है। ग्रुप आई में 1 बजे फ्रांस वर्सेस इराक, फिर कल सुबह 4 बजे नॉर्वे वर्सेस सेनेगल और सुबह 7 बजे जॉर्डन वर्सेस अल्जीरिया। एंजॉय द वर्ल्ड कप विद MBC टीवी। टेक केयर।
3: थैंक यू सो मच अरविंद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, जो लोग वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, आई नो यू गोना हैव अ ग्रेट मैच टू वॉच टू। हमारे साथ जुड़े रहिए एंड बस म्यूजिक के साथ अब आगे बढ़ते हैं।
0: इट वॉज द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2 विद माइटी।
5: कम सी वाला मशीरा, एक फॉर्मलेन नू गयों को बूकू प्लीज।
6: RM2
7: रेडियो मस्ती।
6: Morning beat.
8: Oh God, one more remix.
6: A good beat for your morning show.
7: RM2, Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: लड़की शहर की हो या गांव की, दोनों ही खूबसूरत होती है। और यहाँ पर आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो है पीस ऑफ माइंड। तो चलिए गाने कुछ ऐसे हमने चलाए जिससे शायद आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, मन आपका थोड़ा सा हल्का हो गया होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ भाई अब विदिता के जाने का टाइम आ गया है। जी बिल्कुल, मेरे जाने का टाइम आ गया है और उस लड़की के आने का टाइम हो गया है जो कि आपका साथ देने वाली है 9 से 12 के बीच। यस, इट्स टाइम टू वेलकम मनीष माँ जो आपसे थोड़ी देर में जुड़ने वाली है। फिलहाल अभी के लिए अगले गाने के साथ बढ़ते हैं 9 के समाचारों की ओर।

तो जी अब हमारे जाने का टाइम हो गया है गाइस, होप यू रियली हैड अ गुड टाइम हमारे म्यूजिक के साथ टू मेकिंग योर मंडे स्पेशल वन। चलिए चलते चलते यहाँ पर विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू पापा बॉबी जो रहते हैं सेवास्तीपुर, आज उनका बर्थडे, उनकी बेटे लवेश, बेटी ओजस्वी, वाइफ दीपा, सासू मां सीता, ससुर जी दीवान की तरफ से हैप्पी बर्थडे। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे आपके अपने मॉर्निंग बीट में। थारी, थारी, थारी।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा, नमस्कार।
1: नमस्कार और आदाब। सभी को पेंशन प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है। माहिरों के आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखा गया है। अब बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगा। वृद्ध पेंशन के लिए जो लोग योग्य होंगे उन्हें 60 साल से 70 साल के बीच पेंशन पाने का फैसला लेना होगा। लाभार्थियों को पहचानने के लिए एक मींस टेस्ट भी किया जाएगा। मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं। श्रमिक संघ ने इसे एक नाइंसाफी करार दी है। एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष हनीफ पीगन ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है, बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सुधार पर MLC ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम अवाम की भलाई और फायदों से बहुत ही अलग है। बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज राज्यसभा में बहस सत्र शुरू होंगे। प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर प्रस्तुत करेंगे। सांसद, मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों और विभाग के लिए घोषित कदमों पर बहसें करेंगे। गैर सरकारी संगठन मुनाद चैरिटी ने बजट 2026-2027 में शिक्षा, सामाजिक अखंडता और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे या खास जरूरतें पढ़ने वाले बच्चों की मदद के लिए घोषित कदमों पर तसल्ली जताई है। तंजीम के CEO सैमुअल कोयापेन के मुताबिक ये ऐलानात एक अहम कटिबद्धता दर्शाते हैं जो मॉरिशस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है। लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित एक नई मौत दर्ज हुई है। स्टैनली रुजिल की 77 वर्षीय महिला नहीं बच सकी। 16 जून को कॉन्डस के विक्टोरिया अस्पताल में उनकी भर्ती की गई थी और सूत्रों के मुताबिक बागबानी के

0: दौरान उन्हें ये बीमारी लगी होगी। अब तक लेप्टोस्पायरोसिस के 27 मामले दर्ज हो चुके हैं और कुल 7 लोगों की मौत हुई है। और विदेश में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर केयर स्टार्मर के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा दबाव है। उनके इस्तीफे के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। पिछले हफ्ते में कफील्ड के बाई इलेक्शन में एंडी बर्नम की जीत के बाद लेबर पार्टी के लीडरशिप को लेकर उनके लिए एक नई चुनौती पैदा हो गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv. Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: बाकी सब फर्स्ट क्लास है जो वेदिता का साथ होता है। तो अभी के लिए यहाँ पर मरिश्मा का साथ आज का है, यहाँ पर आपका निभाने के लिए। एंड आई गेट हियर सम रियली नाइस सॉन्ग 9:14 ओके 9:14 है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम, वंडरफुल डे है। मैं जानती हूँ अभी तो बहुत सारे लोग होते हैं अभी तक फंसे हैं ट्रैफिक में। सो विद मैं आ ही रही थी, अभी मैं देख रही थी कि कितना वे वो लाइक हम फंसे हुए थे, आप कुछ बोल रहे थे, आई कुडंट अंडरस्टैंड।
1: गुड मॉर्निंग मनीष,
0: लिप को पढ़ रही थी क्या बोल रही थी, ऑन एयर आ जाओ।
1: मैंने बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, समझ ही नहीं रही कि मैं क्या बोल रही हूं, जोर से गुड मॉर्निंग। सो बाहर आप मुझे बताइए कि अभी जो ट्रैफिक है वो कैसा है।
0: आई कैन से इट्स लंबी कतार,
1: लंबी कतार
0: है। एंड ऑसम मौसम। एंड आई जस्ट विश एवरीबडी जो कि अभी तक फंसे हुए है बोंकुआज मैसेज, आई डोंट नो हाउ दे विल कम्युनिकेट, यू नो।
1: सो मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, बहुत देर हो रही है, तो प्लीज लेट अस नो ऑन 549-1294।
0: सो हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। यहाँ पर हमारे जो टाइम है, हमारे जो काम है आपको एंटरटेन करने का। सो आई गेट द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स, लेते हैं अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक। एक्चुअली ये गाना चला देते हैं ना, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी लकी। हियर वी गो, गुड मॉर्निंग अगेन।

0: your daily horoscope.
1: RM2 Radio Musti.
2: नमस्कार, 26 मिनट हुए हैं, आप जुड़े हैं आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ। वैसे आप तो जानते हैं, हर सुबह को हम लेकर आते हैं आपके लिए हॉरोस्कोप। तो शुरुआत करते हैं विद
3: एरीज मेष राशि।
2: सो एरीज वालों के लिए आज आपके एनर्जी और एंथुसियाज्म से भरपूर रहेंगे आप। तो कोई नया प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, अपने नए आइडियाज को कॉन्फिडेंस के साथ रखें। तो फाइनेंशियल मैटर्स में भी अच्छी खबर मिलने की योग है।
3: टॉरस
2: राशि। और टॉरस के बारे में अगर हम शुरुआत करें तो आई गेट हियर आज पेशेंस और प्रैक्टिकेबिलिटी एक्चुअली आपके सबसे बड़े एसेट्स होंगे। फैमिलीज और फ्रेंड्स का साथ, क्वालिटी टाइम, ये सब कुछ मिल सकता है आपको। किसी पुराने इश्यू का सॉल्यूशन भी मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पर बढ़ते हैं विद जेमिनाई।
3: मिथुन राशि।
2: कम्युनिकेशन आज आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। मीटिंग्स, इंटरव्यूज या डिस्कशंस में आपका इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। न्यू कनेक्शन फ्यूचर में फायदेमंद भी साबित हो सकता है।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: सो आज इमोशंस और लॉजिक के बीच बैलेंस बनाए रखें। वर्क लाइफ में प्रोग्रेस का संकेत है। अपने लाइफ और रेस्ट को इग्नोर ना करें। ओके, अपने लाइफ में हेल्थ और रेस्ट दोनों को इग्नोर ना करें, क्योंकि फ्रेश माइंड ही बेस्ट डिसीजन लेता है। आप

0: तो जानती है।
1: लियो सिंह राशि,
0: आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आज आपको सबको इम्प्रेस करने वाली है। यस, किसी इम्पोर्टेंट काम में अप्रिसिएशन भी मिल सकती है आपको। अपने कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे यूज करें, और नेसेसरी ये भी है कि आर्ग्यूमेंट्स के से बच के रहिए।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से आज आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने के बजाय बिग पिक्चर पर फोकस करें। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अभी ये अच्छा समय चल रहा है आपका।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स के लिए आज का दिन शुभ है। किसी दोस्त या कलीग का साथ भी मिल सकते हैं आपको। आपकी जो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आपको नई सोच भी दे सकते हैं। बैलेंस बनाए रखें और दिल की बात कहने से हमेशा डरिएगा मत।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आपकी डिटर्मिनेशन आज आपको सक्सेस के करीब ले जाएगी। लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने का ये सही समय है। किसी का सपोर्ट अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज एडवेंचर और लर्निंग दोनों का योग है। न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंस के लिए खुद को ओपन करें। Yes, open your mind. Keep positive attitude, क्योंकि ये जो positive attitude है आपके लिए नए doors को भी खोल सकता है।
1: Capricorn, मकर राशि,
0: discipline और hard work का reward भी मिल सकता है आपको आज। Career related matters में progress नजर आएगी आपको, और अपने achievements को celebrate करना ये ना भूले, ये जरूरी भी होता है।
1: Aquarius, कुंभ राशि,
0: क्रिएटिविटी और इनोवेशन आज आपको अलग पहचान दिलाएगी। नेटवर्किंग और टीम वर्क से फायदा भी मिल सकता है आपको। अपनी यूनिक थिंकिंग पर भरोसा रखें। आगे आगे देखिए होता है क्या।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: और लास्टली पाइसेस के लिए आज आपकी इंट्यूशन, यस इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। अपने इनर वॉइस को सुने और पॉजिटिविटी के साथ अपने आस पास की समस्याओं का हल आप भी ढूंढ पाएंगे। जी हाँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या मेडिटेशन से मन को शांति मिलेगी। ये थी आपके लिए आज हॉरोस्कोप।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

एक्चुअली ऑल द बेस्ट एंड बोंगो हर्ष के साथ हुई जिन एवरीबॉडी जो कि काम भी पर पहुंच भी गई है और यहाँ पर आपके मैसेजेस जो आ रहे हैं बहुत सारे हैं. हेलो जी, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, लवली सॉन्ग सिलेक्शंस. वैसे आपके जो दिन में है थोड़ा सा पॉजिटिव लाने के लिए हम यहीं पर बैठे हैं. वैसे यहाँ पर रागेट या तुम क्या मिली थी फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आपका फेवरेट है हम तो जानते हैं.

कसम से तो कमाल है राघव चैतन्य एंड वरुण जैन, तुमसे ही चिकन फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसे उछल जाए। ऐसे ऐसे ऐसे म्यूजिक जब बजते हैं सुबह सुबह को हमारे मूड जो है सेट ही हो जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल स्टार्ट इन द मॉर्निंग। ऑफ कोर्स आफ्टर द मॉर्निंग शो ये है मस्ती मॉर्निंग ऑन आरएम2।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: कहते हैं कि ब्रेकफास्ट को कभी अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। एक हेल्दी पावर ड्रिंक सिर्फ आपको और आपकी भूख नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और मूड को भी बूस्ट कर देता है। जी हाँ, कहते हैं कि वन एप्पल अ डे keeps a doctor away. ये तो आपने सुना है यार, ये सही सुना है। Well, you can just add one apple chopped, one glass of milk, one tablespoon of peanut butter. Yes, you heard it right. Peanut butter, one tablespoon of it, one tablespoon of oats also, one teaspoon, ये optional है, honey. Yes, honey, it is optional. सब ingredients को blend करके cream your delicious drink तैयार कीजिएगा। ये protein, fiber और healthy fats से भरपूर है जो आपको सुबह से ही energy और फोकस दे पाएगा। So, start your day strong, stay healthy and keep smiling here on RM2.
1: RM2, Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: घड़ी मिलाते चलिए 10 बजे है. आई मिलते हैं सुमेरा से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. नमस्कार आदाब आपको सुमेरा.
6: नमस्कार आदाब. पेंशन प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है. माहिरों के आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखा गया. अब बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू होगा. वृद्ध पेंशन के लिए जो लोग योग्य होंगे उन्हें 60 साल से 70 साल के बीच पेंशन पाने का फैसला लेना होगा. लाभार्थियों को पहचानने के लिए एक मींस टेस्ट किया जाएगा. मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं है. श्रमिक संघ ने इसे नाइंसाफी करार दी. एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष हनीफ पिहान ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है, बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा. इस सुधार पर एमएलसी ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम आवाम की भलाई और फायदों से बहुत अलग है. बजट 2026-2027 की पेशकश के बाद आज राष्ट्रीय सभा में बहस सत्र शुरू होंगे. प्रधान एवं वित्त मंत्री अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को दूसरी पढ़त पर प्रस्तुत करेंगे. सांसद, मंत्री और जूनियर मंत्री बजट में मुख्तलिफ मंत्रालयों और विभागों के लिए घोषित कदमों पर सवाल करेंगे. लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित एक नई मौत दर्ज हुई है. स्टैनली रोजिल की 77 वर्षीय महिला नहीं बच सकी. 16 जून को कॉन्डस के विक्टोरिया अस्पताल में उनकी भर्ती की गई. सूत्रों के मुताबिक बागबानी के दौरान उन्हें ये बीमारी लगी होगी. अब तक लेप्टोस्पायरोसिस के 27 मामले दर्ज हो चुके हैं और कुल 7 लोगों की मौत हुई. अधिकारी सभी तरह की सावधानी बरतने की मांग कर रहे हैं, खासतौर पर बागबानी या बाहर के काम करते हुए पानी या कीचड़ से. दस्ताने, अच्छे जूते पहनने का मशवरा दिया जा रहा है. बुखार, बदन में दर्द या बेआरामी होने पर डॉक्टर से फौरन मुआयना करवाने की मांग की जा रही है. प्रदेश में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को आखिरी रूप देने के लिए बातचीत जारी है. स्विट्जरलैंड में उच्च सतह वाला सत्र लग रहा है. पिछले हफ्ते दोनों मुल्कों ने अमन कायम कर

0: ने के मकसद से आपस में समझौता तय करने पर रजामंदी जताई थी। वो भी 60 दिनों के अंदर बातचीत कुछ धुंधली शर्तों पर स्पष्टीकरण लाने के लिए की जा रही हैं, खासतौर पर आब नए हुरमुज को दोबारा खोलने के सिलसिले में। दक्षिणी लिबनान में हमलों को भी बंद करने की शर्त है और परमाणु समझौते के भी पहलू शामिल हैं। फुटबॉल में आज यूरुग्वे और काबू वेद के बीच मैच खेला गया जो ड्रो गया, स्कोर रहा 2-2 और इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को जबरदस्त शिकस्त दी, स्कोर रहा 3-1। आज रात 9 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। पेटी शुमें बेले रिविया सेश में 62 साल के 62 years old श्री हरिदेव तेंबा जो बाबुल के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर तीन बजे इनकी पत्नी रेशमी बाई तेंबा के घर पेटी शुमें बेले रिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 3 PM स्वदेश लेन वाली दे प्रेत्र में 80 साल के 80 years old श्री गौकरण मानिक जो जगदीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर के दो बजे इनके बेटे भरंजय मानिक के घर स्वदेश लेन वाली दे प्रेत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है और हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 549 1294 पर कुमार सानू सुनिधि चौहान की आवाज में। अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक। कहीं प्यार ना हो जाए, टाइटल सॉन्ग हो जाए आपके नाम ही।
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
1: RM2 Radio Musti

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Welcome to RM2.
2: मस्ती मॉर्निंग्स
3: 10:24 होने को है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी तो काम पर भी पहुंच चुके हैं। अभी आपके लिए फैशन टिप को किया, लेकिन ऑल दोस्त जो कि घर पे है, कोई बात नहीं, आज छुट्टी है, वेरी गुड। वैसे घर के काम करते हुए स्टाइलिश भी दिखना मुमकिन है। यस, इट इज पॉसिबल टू लुक वेरी वेरी नाइस एंड कोजी इन व्हाटएवर यू आर वेयरिंग। हल्के और कंफर्टेबल फैब्रिक्स जैसे कॉटन की कुर्ती, सिंपल सूट या लाइट साड़ी पहनिएगा। कहीं पर जाने का ये जो प्लान है आज आपने बना लिया तो वेरी गुड। छोटी छोटी एक्सेसरीज, आप फुटवेयर और नीटली टाइड हेयर आपके लुक को और भी सुंदर बना देते हैं। जैसे याद रखिएगा कि सुंदरता महंगा, एक्चुअली महंगे कपड़ों में नहीं होता जी, एक स्माइल के साथ, बल्कि और भी कॉन्फिडेंस देता है आपकी स्माइल। जी हाँ, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है, और जो कुछ भी आप पहन लेते हो ऐसे स्टाइलिश ही बन जाते हैं, ऐसे दिखता है आपने। सो हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। कुछ लोग तो अभी शॉपिंग के लिए भी निकले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार छुट्टी है। वेरी गुड, मंडे को, वेरी नाइस, हैव अ वंडरफुल डे। कोई भी प्लान हो हफ्ते की शुरुआत में या फिर बीच में या फिर अंत में, ये आपका दिन है, आपने चूज किया है। एंड नाउ इट्स अपन यू, योर चॉइस कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो, दिन को प्रोडक्टिव या फिर नेगेटिव, बस आप पर निर्भर।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: यू आर लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती।

बात है, ऐसे ऐसे खूबसूरत गानों का साथ होता है तो टाइम का पता भी नहीं चलता कि कब खत्म हो गया। 10:48 हुए हैवी के लिए लेट, एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक विद लम्हा लम्हा। दिस इज ड्यूएट वर्जन गैंगस्टर मूवी से, स्पेशल फॉर द म्यूजिक लवर्स आउट देयर।

0: एबी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेरा अली के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार आदाब। बजट 2026-2027 में ऐलान कुछ कदमों पर अगर रोशनी डालें तो कुछ पैदावारों पर टैक्स बना हुआ है। शराब और सिगरेट पर परसों से इनके दामों में 10% की बढ़ोतरी लाई गई है। वाइन और बिया के दामों को बरकरार रखा गया। इसके अलावा कुछ सामानों पर वैट को खारिज कर दिया गया है। मॉरिशस लेबर कांग्रेस पेंशन में सुधार के फैसले से खुश नहीं है। श्रमिक संघ ने इसे एक नाइंसाफी करार दी। एक विज्ञप्ति में अध्यक्ष अनिफ पीगन ने कहा कि नई पेंशन प्रणाली से एक सामाजिक बुनियाद पर असर हो रहा है, बहुत से बुजुर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इस सुधार पर MLC ने बड़ी चिंता जाहिर की क्योंकि ये कदम अवाम की भलाई और फायदों से बहुत अलग है। हालिया बजट में मैटरनिटी को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई है उस पर बहुत संतुष्टि जताई जा रही है, लेकिन छोटे एवं मध्यम उद्योगों में राय अलग अलग है। बच्चे को जन्म देने के बाद मां को 6 महीनों का पेड लीव मिलता है और बाकी के 6 महीने उस पर निर्भर हैं कि वो लेना चाहेगी या नहीं, जिसकी आधी तनख्वाह प्राप्त की जाएगी जो मालिक पर मुनहसर है। कंपनी मालिकों का यही फिक्र है कि किस तरह कर्मचारी को मैटरनिटी लीव के दौरान रिप्लेस किया जाएगा, वो भी कंपनी की गतिविधियां बरकरार रख कर अतिरिक्त दामों का सामना करते हुए। SME चैम्बर के मुताबिक 1 साल की मैटरनिटी लीव से कर्मचारियों के संचालन में दिक्कतें होंगी और उद्योगों का बोझ भी बढ़ जाएगा। विदेश में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी को आखिरी रूप देने के लिए बातचीत जारी है। स्विट्जरलैंड में उच्च सतह वाला सत्र लग रहा है। पिछले हफ्ते दोनों मुल्कों ने अमन कायम करने के मकसद से आपस में समझौता तय करने पर रजामंदी जताई थी, वो भी 60 दिनों के अंदर अंदर। बातचीत कुछ धुंधली शर्तों पर स्पष्टीकरण लाने के लिए की जा रही है, खासतौर पर आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के सिलसिले में। दक्षिणी लेबनान में हमलों को भी बंद करने की शर्त है और परमाणु समझौते के भी पहलू शामिल हैं। फुटबॉल में आज यूरुग्वे और काबो वर्द के बीच मैच खेला गया जो ड्रॉ गया। स्कोर रहा 2-2। इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को जबरदस्त शिकस्त दी। स्कोर रहा 3-1। आज रात 9 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Welcome to RM2.
4: Musty Mornings, Radio Musty.
5: La la la la la la ho gaye de, beja beja beja beja ho gaye de, la la la la la la la ho gaye de.

0: लव आजकल मूवी से लिया गया ये गाना थोड़ा थोड़ा प्यार फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम इन द लास्ट आवर ऑफ योर मस्टी मॉर्निंग्स हियर विद मनीष मैं ऑफ कोर्स 12 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा यहाँ पर आगे टू सम रियली नाइस सॉन्ग जस्ट टू गिव यू द राइट करेज एंड द राइट बीट एंड द राइट मूड हियर वी गो
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Bros for you, चितया कलया, ladies and gentlemen. वैसे चाहे आप घर पे हो, चाहे आप काम पर भी हो, चाहे आप earphone के जरिए हमको सुन रहे हो, तो welcome, welcome here. Golden झुमके, ये सब भूल जाओ. Smile girl, दो. You'll feel better, you'll feel positive, you'll feel happy also. Yeah.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

आते जाते वैसे आपके मैसेजेस तो आते रहते हैं यहाँ पर. ट्रस्ट यू फाइन. आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे सॉन्ग टू माय पुपू श्रीमती चंद्रमणि हु लिव्स एट सुल्याका. और ये जो डेडिकेशन आया है नीस प्रिया की तरफ से है, दमाड संजीव एंड ग्रैंड डॉटर लिडी सुग्रीम. वी आर फ्रॉम पेरिस राइट नाउ. वी से हैप्पी बर्थडे गुजार टू ईच एंड एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल्सो आज विश्वमित उचा माँ का जो 60th बर्थडे है सेलिब्रेट कर रहे हैं. सारिका धन्येशा सर्वेशी वेंकटेश राम सुवेंद्रा राधा है एंड विमा एंड जानी पूनम आशनिया एंड शीला ऑल्सो. विश्वानी की तरफ से मैसेज आया है हैप्पी हैप्पी बर्थडे.

0: रेडियो मस्ती।
1: यस, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे दिन अच्छा रहे और आपकी जिंदगी में बस आप ऊंचाई तक पहुंचाए और आपके दिल की कामना वही हमारे साथ यूं ही पूर्ण हो जाए। और यहाँ पर दिल और साथ माने के लिए आगे थे द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली फॉर ऑल दोस सेलिब्रेटिंग द बर्थडे एंड आल्सो ऑल द म्यूजिक लवर्स। ले जाओ साथ सुल्तान खान की आवाज में। फॉर यू कम हियर राइट अवे राइट नाउ।
2: You're listening to RMT, a radio

0: है कुनाल गंजावाला मूवी. एक्चुअली ये बाबुल मूवी है कुनाल गंजावाला की आवाज़ में, स्पेशल फॉर ऑल दोज जो कि हमारे साथ दे रहे हैं. ऑल द बेस्ट गुज़ आउट टू यू. बॉन कुराज. सो मेनी पीपल आर वर्किंग राइट नाउ. वी आर कीपिंग यू कंपनी विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शन. यहाँ पर 12 से 2 लेकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं रेट्रो रिदम. आर एम टू रेडियो मस्ती पर जुड़े रहिए. लेते हैं अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देन कोई ताज़ा हवा हम कुछ हो गए.
1: RM2 Radio Musti.
2: La FIFA World Cup 2026 chez McDonald's est officiellement lancée et elle arrive avec 6 gobelets de collection. Et quel line-up! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Song Heung-min, sans oublier notre capitaine adoré, l'incontournable Grimace. À l'achat d'un large meal, gagnez un gobelet en cadeau grâce à la FIFA World Cup 2026 chez McDonald's. À vous de jouer!
3: Dans tous les restaurants McDonald's pour une durée limitée jusqu'à épuisement des stocks. Tout droit réservé à McDonald's 2026, FIFA World Cup 2026.
1: RM2
4: Radio Musti.

0: You're listening to RM2 Radio.
1: या चुप रहूं कह दूं तुम्हें फॉर यू दिस इज द अनवाइंड वर्जन. अभी प्रियंका आ रही है, एक्चुअली नीलमणि आ रही है. नीलमणि जो आपको अकंपनी करने वाली है भारत से, तो मैं आपके लिए रेट्रो रिदम में

0: RM2 Radio Masti. The time is brought to you by McDonald's.
1: Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Masti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: दिन के 12 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे सुमेरा नमस्कार.
6: नमस्कार रादा. बजट 2026-2027 पर बहस सत्र की शुरुआत में आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बजट में घोषित पेंशन सुधार पर एक बयान दिया. डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि वृद्ध पेंशन की अदायगी के लिए जो मींस टेस्ट करने का प्रावधान घोषित किया गया था उसे फ्रीज कर दिया गया है. प्रधानमंत्री को सुनते हैं.
7: मैडम स्पीकर, आफ्टर माय बजट स्पीच ऑफ लास्ट फ्राइडे I've listened to the views and heard the views of the population to the proposed measures regarding pension reform. The population has clearly already realized the unsustainability of the basic retirement pension, as we have known it. The measures taken last year have already positively impacted the economy, and we have already seen how it has helped public finances. I have this morning met a number of my ministers with the technicians on pension reform and those of the Ministry of Finance to discuss the matter further. I have taken on board the suggestions made. Anxious of the concerns of the people, whilst it will have consequences both on the budget deficit and on the public sector debt, we have decided to freeze the means testing proposed. Thank you.
6: अभी बहस की शुरुआत में विपक्ष नेता जूली जोंग सत्र यानी सभा को संबोधित कर रहे हैं. कुछ पैदावारों पर टैक्स की बात करें, शराब और सिगरेट पर परसों से दामों में 10% की बढ़ोतरी लाई गई है. वाइन और बियर के दामों को बरकरार रखा गया है. इसके अलावा कुछ सामानों पर वैट को खारिज कर दिया गया है. गैर सरकारी संगठन मुनाद चारिटी ने बजट 2026-2027 में शिक्षा, सामाजिक अखंडता और पढ़ाई में मुश्किलों का सामना कर रहे या ख़ास ज़रूरतें पढ़ने वाले बच्चों की मदद के लिए घोषित कदमों पर तसल्ली जताई है. तंजीम के CEO सैमुअल कोयापेन के मुताबिक ये ऐलानात एक अहम कटिबद्धता दर्शाते हैं जो मॉरिशस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए है. विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला सत्र ख़त्म हो गया है. कतर और पाकिस्तान जो मीडिएटर देश हैं उन्होंने कहा कि अंतिम डील तक पहुंचने के लिए ये बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही है और उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रूट मैप पर स्वीकृति भी जताई गई है. फुटबॉल में आज यूरुग्वे और काबू वेर्द के बीच मैच खेला गया जो ड्रॉ गया. स्कोर रहा 2-2. इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को ज़बरदस्त शिकस्त दी. स्कोर रहा 3-1 और आज रात 9 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच मुकाबला होगा. तो अभी के लिए बस इतना ही. थोड़ी देर में शोक समाचार. रुई द्वाजो सेंट क्रॉ में 43 साल के 43 years old श्री अश्विन रामताले, श्री अश्विन रामताले जो बेबी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज सुबह तीन बजे इनके घर रुई द्वाजो सेंट क्रॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. कालीमाई रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 75 साल के 75 years old श्री बसदेव रघुनाथ जो गोप के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी मानती रघुनाथ के घर कालीमाई रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी.

0: Retro Rhythm. गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे लिसनर्स, 12:13 हुए हैं. इट्स नमनी और आप सुन रहे हैं अभी रेट्रो रिदम का शो, जहां 70s, 80s और 90s के वो नगमे चलने वाले हैं जो आज भी दिल की धड़कन को सुरों में बदल देते हैं. कल था वर्ल्ड म्यूजिक डे, लेकिन सच कहें तो म्यूजिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए किसी एक दिन की जरूरत नहीं होती है. म्यूजिक हर दिन हमारे साथ होता है, खुशी में, गम में, सफर में और यादों में. इसलिए हम कहते हैं एवरी डे इज म्यूजिक डे. तो चलिए आज भी कुछ एवरग्रीन मेलोडीज के साथ वक्त को थोड़ा रिवाइंड करते हैं आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर.
1: रेट्रो रिदम. RM2

0: सर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: Retro Rhythm.
1: पर चिट्ठी नहीं बल्कि आपके मैसेजेस आ रहे हैं साथ समुंदर पार नहीं बल्कि व्हाट्सएप के जरिए आप हैं सुकन जी इस समय आप ड्राइव कर रहे हो और डेडिकेट करना चाहते हैं गाना फ्रॉम द फिल्म तेजाब ठीक है जी हम ढूंढ कर चला लेंगे आपके लिए सुकन नाम से वी हैव आवर बड़ी याली शज

0: connected है, hello to you. And we also have Yash Union Park से. आप गानों को enjoy कर रहे हो और dedicate करना चाहते हैं एक प्यारा सा गाना अपनी प्यारी मम्मा के लिए, जो भी काम पर है जरूर जी चला देंगे आपके लिए गाना. आप बस ऐसे ही हमारे साथ RM2 Radio मस्ती पर connected रहिएगा और enjoy कीजिएगा beautiful खूबसूरत नगमे.
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Mustache.

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे प्यार से ही देखना चाहिए एक दूसरे को। ऊपर से आज है बी काइंड डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी काइंडनेस किसी का पूरा दिन बदल सकता है। बिल्कुल उन गीतों की तरह जो बिना कुछ कहे दिल को सुकून देते हैं। 70s, 80s एंड 90s के गाने हमें प्यार, दोस्ती और इंसानियत की खूबसूरती की सीख देते हैं। तो आज किसी को एक स्माइल दीजिए, एक अच्छा शब्द कहें और म्यूजिक के साथ काइंडनेस भी शेयर करते रहिए। एंड आपको बता दें कि 2 बजे तक यो रेट्रो रिदम का सफर जारी रहेगा आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजू रेडियो मस्ती।

0: श्री सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। कई मंत्रियों ने आज सुबह संसदीय सत्र से पहले ट्रेजरी बिल्डिंग गए हुए थे। अशोक सुभन, शकील मोहम्मद, राजेश भगवान, अजय गणेश, रिजाउद्दीन, अरविंद बुलेल और कुछ अन्य बड़े नेताओं ने प्रेस के सवालों से जितना संभव हो सके परहेज किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक की, एक बैठक जो बजट पर मतभेदों की पृष्ठभूमि में हुई। ये मुख्य रूप से पेंशन प्रणाली में सुधार है जो विवाद का कारण बन रहा है। समाज सुरक्षा मंत्रालय की जूनियर मंत्री कुगान पाहापे ने आज सुबह ORM-1 के साक्षात्कार में इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी रेजिस्टेंस एक अल्टरनेटिव के सदस्यों ने इस बजट या घोषणा पर लंबे समय तक विचार किया है, जिसके कारण कई पेंशन प्राप्त करने वाले इस भत्ते का हिस्सा या पूरी तरह से इसे खो देंगे। कुगान पाहापेन, जो बजट पर बहस के लिए राज्यसभा में अपने सरकारी सहयोगियों के साथ शामिल हुए, जो सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ हुई, मींस टेस्टिंग यानी वित्तीय संसाधनों की जांच जिसे लक्षित करने के उद्देश्य से लाया गया था उसे निलंबित कर दिया जाएगा। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने घोषणा की है कि उन्होंने आज सुबह अपने मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने इस साल के बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालयों के लिए 2.6 बिलियन रुपए प्रदान किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में समावेशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप और सीखने में कठिनाइयों या विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता पर बहुत जोर दिया है। NGO मनाद चैरिटी इन कदमों का स्वागत करता है। विदेश में कर्स्टमर ने 10 Downing Street के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो जिस देश से मैं प्यार करता हूँ उसे पहले रखने के बारे में था। और अगले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच चीनी अधिकारियों ने पहाड़ी नालों, जियोलॉजिकल आपदाओं और शहरी जल भराव के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ पहले ही ग्वीज़ू, हुबेई, हुनान और अनह्यू में गंभीर स्थिति पैदा कर चुके हैं, जहां नदियां उफान पर हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 1 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Retro Rhythm.
3: RM2.

0: Retro Rhythm.
1: एंड यस 1:09 हुए हैं. स्वागत है आपका वंस अगेन अपने रेट्रो रिदम की इस खूबसूरत सफर पर विद निर्मनी. एंड आपको बता दें कि मस्ती जारी है सुबह से, लेकिन अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि रेट्रो वाइब्स ऑन हो चुके हैं यार 12 बजे से. एंड आज बॉलीवुड के सबसे दमदार विलन्स में से एक अमरीश पुरी जी की बर्थ एनिवर्सरी है. मुगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग तो आज भी बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक माना जाता है. लेकिन विलेन के रोल के अलावा भी अमरीश पुरी जी एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर थे. एंड उन्होंने बहुत से यादगार फिल्मों में काम भी किया था. एंड आज रेट्रो रिदम पर उनकी यादों को सलाम करते हुए एक बेहतरीन गीत सुनते हैं. तू मेरा जानू है गाना करते हैं आप सभी के नाम और जो कनेक्टेड

0: रेट्रो रिदम।
1: एक बजकर 26 मिनट एंड दोस्तों आपको पता है आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। एंड जैसे रेन फॉरेस्ट हमारी धरती की लंग्स कहलाते हैं, वैसे ही म्यूजिक हमारी रूह की सांसें हैं। रेन फॉरेस्ट हमें फ्रेश एयर देते हैं और पुराने बॉलीवुड गाने हमें फ्रेश इमोशंस दोनों ही हमें जिंदा और कनेक्टेड महसूस करवाते हैं। तो चलिए नेचर और नॉस्टैल्जिया दोनों को सेलिब्रेट करते हैं आपके आर एम टू रेडियो मस्ती पर। एंड ये नेक्स्ट सॉन्ग मैं डेडिकेट करती हूँ आप सभी के नाम जो कनेक्टेड है।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।
1: And वैसे गाने की म्यूजिक से आपने गेस कर ही लिया होगा कि कौन सा गाना है। तो एंजॉय करिए RM2 Radio Musti पर ही ये हसी वादियां।

0: रेट्रो रिदम।
1: अभी के लिए फिर से चलते हैं आपकी व्हाट्सएप मैसेजेस की ओर। वेल, आप कनेक्टेड हुए हो आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ। गुड आफ्टरनून, इट्स नमनी, और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। आप है जया दीदी, डेडिकेट कर रहे हैं गाना अपने भैया कुश सिंह के लिए, जो जा रहे हैं जर्मनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो विश करेंगे आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज। बो कुराज फ्रॉम डेव, नेफ्यू आयुष एंड नीस अवनी। वीना जी भी जुड़ चुकी है नुवेल फ्रांस से, मांग रहे हैं एक स्पेशल गाना अपने हस्बैंड देव के लिए। ज़रूर जी, हमारे साथ कनेक्टेड भी हुई है हेमा जी। हेलो, कैसी हो आप? आप कह रही है प्रोग्राम रॉकिंग है, प्लीज़ गाना चला दीजिए आतिश के लिए। पेरिस से वी हैव देव जी, अपनी बिलव्ड वाइफ के लिए खूबसूरत गाना मांग रहे हैं। चंदरी पुरुषोत्तम जी भी साथ दे रही है, हेलो। और वी हैव दो बर्थडेज टुडे, करणदास जी का बर्थडे है, बेस्ट विशेज फीना की तरफ से। एंड पॉइंट लास्ट कॉल से आप है ऋषि, जो अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो बेस्ट विशेज एंड ऑल द बेस्ट टू यू। एंजॉय योर डे व्हाइल वाइबिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती, एंड टू ऑल दोस जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, ये गाना आपके लिए है।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti.
2: इसी गाने के साथ आई मोर चलाइफ उमीर से बाय, होप यू हैड अ फन आफ्टरनून। इसको और मजेदार बनाने के लिए आ रही है गिनिशा, तो साथ देते रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती पर ही। हैव अ ग्रेट आफ्टरनून।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good afternoon, it's 2 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार
6: नमस्कार 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का पेंशन के लिए प्रस्तावित मींस टेस्टिंग प्रणाली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है यह ऐलान आज सुबह राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने किया इस घोषणा से पहले प्रधानमंत्री ने इस विषय पर सरकार के सदस्यों के साथ बैठक भी लगाई थी बजट 2026-2027 में घोषित इस कदम को लेकर विभिन्न पक्षों से हुई चर्चाओं के बाद ये निर्णय लिया गया है शिक्षा सेक्टर के लिए इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री

0: वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालयों के लिए 2.6 बिलियन रुपए का प्रावधान किया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी शिक्षा, शुरुआती स्तर पर सहायता और सीखने की कठिनाई या विशेष व्यवस्थाओं आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बेहतर सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। इन कदमों का एनजीओ मुनाद चैरिटी ने स्वागत किया। संगठन का कहना है कि ये कदम मॉरिशस की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई संबंधी कठिनाइयों की समय रहते पहचान नहीं हो पाती। कप वेदे का शानदार अभियान फीफा विश्व कप में जारी है। स्पेन के खिलाफ ड्रॉ के बाद केप वेदे ने आज तड़के उरुग्वे को भी 2 की बराबरी पर रोक दिया। हाफ टाइम तक पिछड़ने के बावजूद केप वेदे ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरा ड्रॉ अपने नाम किया। इस परिणाम से ग्रुप एच में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता केर स्टॉर्मर ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिए गए एक भावुक बयान में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ये सवाल पूछ रही थी कि क्या वे अगले आम चुनाव तक नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, और उन्होंने इस सवाल का जवाब स्वीकार कर लिया है। सौम्य ने कहा कि वो लेबर पार्टी के नए नेता के चयन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। पार्टी चाहती है कि नया नेता संसद के सितंबर सत्र से पहले चुन लिया जाए। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में लेबनान संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति जताई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची के अनुसार हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते में लेबनान में सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने तथा इलाकाई तनाव कम करने के कदम शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कालीमाई रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 75 साल के 75 के बासदेव रघुनाथ की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मानती रघुनाथ के मकान ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। समसुंदर रोड बिल्वेडिया में 65 साल की कुशीला अंचराज की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जीवन, लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विशाल अंचराज के मकान बिल्वेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंदे मास पावे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Radio.TV. More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, रेट्रो हिट्स के बाद इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. शुरुआत हमने ऐसे ही थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी रोमांटिक रखी ताकि आपका जो मूड है धीरे धीरे हमारे इन लेटेस्ट सॉन्ग्स की तरफ आ जाए. और अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं. सो वॉर्म वेलकम. 2:08 मंडे आफ्टरनून 22nd of June. आफ्टर योगा डे, आफ्टर म्यूजिक डे, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट म्यूजिक वंस अगेन. जैसे हमने कहा, ईच एंड एवरी डे इट्स सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती. तो चलिए दोस्तों, परी होगी आपके साथ टिल 4 PM. आप भी साथ दे रहे हैं इस आफ्टरनून टाइम में. वैसे सर्दियों की शुरुआत तो हो चुकी है. ओ माय गॉड, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, जहां पर सर्द सर्द हवाएं आफ्टरनून में भी फील हो रही है. और ऐसे मौसम में आप अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा वार्म वाटर पीते रहिए, अपने गले का, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए. और आपके दिल का ख्याल रखने के लिए तो हम हैं ना, विद सम लेटेस्ट सॉन्ग्स. एंटरटेनमेंट फुल ऑन आपके लिए होने वाला है. और अगर साथ दे रहे हैं आप भी, सो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर. चलिए दोस्तों, एक और ब्यूटीफुल गाना. आजकल कॉकटेल 2 की काफी बात चल रही है. फिल्म ने अच्छी खासी ओपनिंग कर ली है और 2 ही दिन में अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए हैं. सो उसी फिल्म का एक सुपर रोमांटिक गाना, दैट्स इन द वॉइसेस ऑफ अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान. एक खूबसूरत रोमांटिक स्टार्ट आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. एंजॉय दिस वन टू ऑल द लव वर्ड्स एंड टू ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती.

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: बॉम्बे टॉकीज,
2: रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
4: तो चलिए दोस्तों, जैसे हमने कहा कि कॉकटेल मूवी रिलीज हो चुकी है और फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। सो कृति सनन की फिल्म कॉकटेल 2 को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की, वीकेंड पर भी फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया। इसी बीच कृति सनन जुहू स्थित PVR पहुंची, उनके कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कृति सनन की फिल्म कॉकटेल 2 19 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई और फिल्म को दर्शकों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कॉकटेल ने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ की कमाई की, वीकेंड पर भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया और फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 47.50 करोड़ हो चुका है। इसी बीच कृति सनन PVR पहुंची और वहां उनकी कई तस्वीरें सामने आ रही है और एक्ट्रेस व्हाइट कलर की ड्रेस में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही थी। कृति को थिएटर में देखकर वहां मौजूद ऑडियंस सुपर एक्साइटेड नजर आई। कृति ने फैंस के साथ जमकर फोटोज भी क्लिक किए। बता दें कि फिल्म में कृति के अलावा शाहिद कपूर एंड रश्मिका मंदाना भी लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं और जैसे हमने कहा, कॉकटेल 2 मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। तो चलिए दोस्तों, उसी फिल्म का ये गाना हैरी संधू एंड बाइनी की आवाज़ें। That's one love for you, everyone who's connected हमारे साथ। बी टाउन की अपडेट्स, it's time for your Bombay Talkies। मैं हूँ परी आपके साथ till 4 PM on Radio Masti।

0: 2 Radio Musti.
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स इट्स 2:55 एंड विद दिस नेक्स्ट ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर. इस वक्त विजया जी हमारा साथ दे रही हैं वाकवासी एंड कहते हैं सर्दी वाला मौसम लेकिन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. थैंक यू जी. गाना होगा आपके लिए और इस वक्त आपके मूड को सेट करने के लिए वी हैव अ ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप इन द वॉइस ऑफ जुबिन नौटियाल. साथ ही यहाँ पर यलेश साथ दे रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम सुरिनाम डेडिकेटिंग गाना फॉर ऑल शाम फैमिली. और यहाँ पर सुनीता लोलचंद साथ दे रहे हैं आप भी और कहते हैं दैट कल शोमा लोलचंद अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. विशेष उनके लिए फ्रॉम दादी उनकी मामा दीक्षा पापा आतिश ग्रैंड पापा नरवेश साथ में है अभिषा और सभी लोलचंद एंड रामधनी परिवार भेज रहे हैं उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेष. साथ ही यहाँ पर दीपू हमारे साथ कनेक्टेड है.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राज्यसभा में मींस टेस्टिंग व्यवस्था को फिलहाल रोकने की घोषणा की। इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट पेंशन की राशि सभी को एक समान देने के बजाय व्यक्ति की मासिक आय के अनुसार तय की जानी थी। राज्यसभा की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक लगाई। बैठक के बाद सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक

0: उन्होंने कहा कि पेंशन सुधार को लेकर लोगों की राय और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है। शिक्षा सेक्टर के लिए इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने शिक्षा के और उच्च शिक्षा मंत्रालयों के लिए 2.6 बिलियन रुपए का प्रावधान किया है। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी शिक्षा, शुरुआती स्तर पर सहायता और सीखने में कठिनाई या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बेहतर सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। इन का एनजीओ मुनादा चैरिटी ने स्वागत किया। संगठन का कहना है कि ये कदम मॉरिशस की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई संबंधी कठिनाइयों की समय रहते पहचान नहीं हो पाती। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लिबर पार्टी के नेता केयर स्टॉर्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिए गए एक भावुक बयान में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ये सवाल पूछ रही थी कि क्या वे अगले आम चुनावों तक नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और उन्होंने इस सवाल का जवाब स्वीकार कर लिया है। स्टॉर्मर ने कहा कि वे लिबर पार्टी के नए नेता के चयन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। पार्टी चाहती है कि नया नेता संसद के सेप्टेम्बर सत्र से पहले चुन लिया जाए। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में लेबानन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति जताई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची के अनुसार हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते में लेबानन में सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने तथा इलाकाई तनाव कम करने के कदम शामिल हैं। इसके तहत अमेरिका, ईरान और लेबानन के बीच एक विशेष समन्वय तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। हालांकि समझौते के बावजूद दक्षिणी लेबानन में हिजबुल्ला और इजराइल ताकतों के बीच झड़पें अभी भी जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Techies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, 3:15 हो गए हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती. मंडे आफ्टरनून है. वैसे तो वीकेंड के बाद जब मंडे आता है लगता है थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन देखिए टाइम तो कहाँ चले जाता है, किसको पता चलता है. वक्त रोके से भी रुकता नहीं है और बस आपको टाइम निकालना है टिल 4 PM, उसके बाद काम खत्म एंड बैक टू होम. कुछ लोग देर तक भी काम करते हैं, लेकिन नॉट टू वरी, काम आपका चलता रहेगा और बैकग्राउंड में गाने हम आपके लिए चलाते रहेंगे. फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ, बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड सम लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके नाम स्टेबल कनेक्टेड साथ दे रहे हैं. तो आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: Bombay Talkies,
1: Radio Musti,
2: Radio Musti.
3: तो चलिए दोस्तों, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में राकेश बेदी ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का जो दिल है वो जीत लिया और गुजरे दौर से ही फिल्मों में अपनी शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीतते आ रहे हैं राकेश, और धुरंधर में उनके काम के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सराहा गया। दमदार एक्टिंग के बाद अब राकेश बेदी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी मशहूर और खूबसूरत अदाकारा नौरा फतेही के साथ। दोनों का एक नया गाना या बाबा सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। टी सीरीज ने हाल ही में इस नए गाने या बाबा को रिलीज किया है, और इस गाने में नौरा ने अपने गजब के डांस के साथ साथ अपनी खूबसूरती का भी तड़का लगाया है। इसमें अरबी संगीत का असर, जोश भरे साउंड और झूमने वाले रिदम फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। सभी के लिए तो हम

रहे हैं कि आई गेस इट्स द बेस्ट बेस्ट टाइम फॉर राकेश बेदी, जहां पर एक बार फिर उनकी जो एक्टिंग की गाड़ी है वो फिर से पटरी पर आ गई है। वैसे तो हमने उन्हें बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन कभी कभार कुछ फिल्में ऐसी होती है जो उनके परफॉर्मेंसेस को इतना निखार देती है, उनकी अदाकारी को इतना निखार देती है कि एक बार फिर वो लोगों की नज़र में आ जाते हैं। और अब तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिल्में भी मिलती आ रही है। सो अब देखना ये होगा कि या बाबा के बाद हम उन्हें कौन से नए प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। धुरंधर की बात की है एंड वी हैव दिस सुपर रोमांटिक गाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग अरिजीत सिंह एंड अरमान खान की आवाजें फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए परी का साथ टिल 4 PM।

0: Bombay Talkies Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: चलिए दोस्तों 3:36 हो गए हैं और बात करेंगे बोनी कपूर की बेटी अर्जुन कपूर की सिस्टर अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग शादी के बंधन में बंधने जा रही है और कपल के प्री वेडिंग फंक्शंस शुरू हो गए हैं। बीते दिन अंशुला और रोहन की शादी से पहले की रस्मों और पूजा के लिए संजय कपूर

कपूर से लेकर जानवी कपूर तक सभी सदस्य पहुंचे और शनाया कपूर ने इस फंक्शन की इनसाइड तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की। अंशुला और रोहन के प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत माता की चौकी से हुई। इस पूजा सेरेमनी के वीडियो में अंशुला और रोहन साथ में आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाद में कपूर परिवार के सदस्यों के म्यूजिक, डांस और जश्न में शामिल होने से माहौल और भी शानदार हो गया। माता की चौकी के लिए अंशुला ने गोल्डन कलर का एक हैवी लहंगा पहना हुआ था और इसके साथ उन्होंने कलरफुल दुपट्टा कैरी किया था। इस ट्रेडिशनल लुक में अंशुला बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वहीं उनके होने वाले दूल्हे रोहन रेड कलर के आउटफिट में काफी जच रहे थे। अंशुला ने इस दौरान अपनी बहनों संग खूब तस्वीरें शेयर की और अब बोनी कपूर की ब्यूटिफुल बेटी बंधने जा रही है शादी के बंधन में विथ हर लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंड गुड विशेज हमारे पूरी टीम की ओर से एंड ऑफकोर्स हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं। लेट मी टेल यू बी टाउन की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहते हैं दोस्तों। थोड़ी ही देर में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी होने वाले हैं ऑन 5499 1294।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: It's 3:54 and it's time for Pari to say goodbye. जाने से पहले यहाँ पर डेविसन लाल माटी से हमारा साथ दे रहे हैं वो. Welcome dear, कैसे हैं आप? I do hope सब कुछ ठीक ठाक. आपके लिए चलाएंगे एक beautiful गाना and कुमार देवचन back from work and अभी इस वक्त कहते हैं enjoy कर रहा हूँ प्रोग्राम को. Dedicating गाना for lovely papa श्याम देवचन of Paybe. Love you papa each and every day. ये wishes हैं आपके पापा के नाम. ललिता जी साथ दे रही हैं आप भी और साथ में है सुमा सुनीता नीला रवि सोनिया साथ में है एशली रूमी पूर्णिमा पिंकी एंड हमारी प्यारी सी ललिता जी भी हमारा साथ दे रही हैं. सो गाना होगा आपके नाम एंड कहते हैं प्लीज़ एक प्यारा सा गाना फॉर माय फैमिली हबी सनिल बेटी है युवाना एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आरती प्लनमायो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप. ऑल्सो फॉर योर कलीग्स संजना और साथ ही जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग टू आरएम टू रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच दोस्तों आपने इतने प्यार से साथ दिया. अगले गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है गिनिशा लेकर रफ्तार वाइब्स आपके लिए स्टेबल कनेक्टेड.

0: Such a beautiful track and the lovely voice of Arijit Singh. आप लोगों के लिए on RMT Radio messages check your time. फिलहाल के लिए it's already 4 PM.
1: RMT Radio message.
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: The Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ. नमस्कार.
7: नमस्कार. 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रसभा में मींस टेस्टिंग व्यवस्था को फिलहाल रोकने का ऐलान किया. इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट पेंशन की राशि सभी को एक समान देने के बजाय व्यक्ति की मासिक आय के अनुसार तय की जानी थी. राष्ट्रसभा की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने आज सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक लगाई. बैठक के बाद सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि पेंशन सुधार को लेकर लोगों की राय और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है. विपक्ष नेता जुलेश रंगौ ने आज राष्ट्रसभा में बजट 2026-2027 पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव देश के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात है. हालांकि उन्होंने बजट के कुछ कदमों का स्वागत भी किया. इनमें मैटरनिटी लीव और अन्य कदम भी शामिल हैं. फ्रांस इस समय भीषण गर्मी की चपेट में. हालात ऐसे हैं कि रात के समय भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही. कई शहरों में जून महीने के लिए रात का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है. इस असाधारण गर्मी

0: गर्मी को देखते हुए सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। वहीं लगभग 35 मिलियन लोग रेड अलर्ट के दायरे में हैं। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में लेबनान संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति जताई। ईरान के विदेश मंत्री के अनुसार हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते में लेबनान में सभी मोर्चों पर लड़ाई समाप्त करने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने तथा इलाकाई तनाव कम करने के कदम शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6 बजे एक पूरे समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: बिल्कुल जी, अगर लाइफ ने आपने प्यार नहीं किया तो क्या किया, और आप लोगों के प्यार खींच कर लेकर आ जाते हैं हमें ये ऑन आवर टू रेडियो मस्ती है। सो चेक योर टाइम, स्टूडियो के घर में 4:05 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर। नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, सिर बेल्ट लगा लिया, इंजिन आपका स्टार्ट हो गया, तो अब है टाइम वॉल्यूम फुल ऑन करने का अपने हेयर रेडियो का, क्योंकि ये आ गए हैं आपका रफ्तार वाइब्स। जी हाँ, यो फिल्मी हेयर वाइब्स जो है सिर्फ रेडियो मस्ती पर, और नॉन स्टॉप हिट म्यूजिक को लेकर ज़बरदस्त एनर्जी और वो बीट्स जो आपके सफ़र को हम बनाएंगे और भी मस्त। ट्रैफिक हो या हाईवे, रफ्तार वाइब्स हमेशा हमेशा रखेंगे आपको फुल ऑन चार्ज। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। हमारे सारे सारे लिसनर्स का हमने बड़े प्यार से स्वागत कर लिया है। सो इस खूबसूरत से जो हम गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द एंटायर शो टू ऑल माय डियर एंड लवली लिसनर्स। तो चलिए जी, स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद गिनिशा ऑन आवर ऑन टू रेडियो मस्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

That was such a lovely track in the lovely voices of Sonu Nigam and Aziz Kaur. Aap logon ke liye taken from the movie Sunny Sanskari ki Tulsi Kumari. On our run to Radio Masti. Time beta chala ja raha hai. 4:15 ho chuki hai. And you're listening to your number one radio station. Ji haan dosto. Umeed karte hai ki aaj ka din aapke liye acha ja raha hai. Aaj hai Monday 22nd of June 2026. 22 din bhi ho gayi. June mahine ka. Wow. Time itne jaldi jaldi hai beta chala ja raha hai. Tabhi to hum bolte hai hamesha aap sabhi logon ko. Ki apne zindagi ko aise jo जैसे कि आज आपकी आखिरी दिन हो क्योंकि ये कल किसने देखा और वक्त का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकती बिल्कुल जी और फिलहाल के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक कैडो यस आई गॉट यू अ गिफ्ट राइट नाउ इट्स अ वाउचर वर्थ 500 रुपीस ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड सो माय डियर लवली लिसनर्स आर यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट गिफ्ट आइडिया इफ यस देन mysticworld.mu वहां पे दिस इज द राइट एड्रेस जहां पे यू कैन डिस्कवर द एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी भी और ऑथेंटिक क्रिस्टल्स भी आपको मिलेंगे एंड स्टनिंग होम डेकोर सो मिस्टिक वर्ल्ड डॉट एम यू हैज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर आप उन्हें विजिट कर सकते हैं उनके वेबसाइट पर mysticworld.mu पर या कॉल कर सकते हैं 5880-7652 पर 5880-7652 पर और फिलहाल के लिए एक सवाल पूछूंगी आपको बस सही जवाब देना है ऑन 5499-1294 पर 5499-1294 विथ योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ यू गिव मी द फुल नेम एंड फुल एड्रेस विथ द राइट आंसर और 5499-1294 पर आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गाना यू जस्ट हैव टू टेल मी हु इज द सिंगर ऑफ दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग Well, I guess ki sabhi logon ko pata hai. Sahi jawab aapke paas hai. Send it to me right now, right away.

Well guys, I really hope that you guys are really enjoying these beautiful and lovely गानों का selection से जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जी ऐसे देखा जाए तो इस वक्त जो है सिग्नल जो है रुक सकता है ट्रैफिक जाम लग सकते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट पर नेवर रफ्तार ब्राइब्स ऑन रेडियो मस्ती लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ नॉन स्टॉप हिट्स जो बस आपके इस आफ्टरनून को भी बनाएगा धमाकेदार सो हर बीट पे एनर्जी हर गाने में हमेशा एक्साइटमेंट होती है तो नो ब्रेक्स ऑन फन जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड कीप ऑन वाइबिंग विद मी आज की निशा ऑन RM2 रेडियो मस्ती और जैसे कि आपको पता है आई टोल्ड यू सम टाइम अर्लियर दैट आई हैव अ गेम आई हैव अ वाउचर टू गिव अवे टू यू फूड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड 500 रुपीज वाउचर और पूछा गया था एक सवाल जी हाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा हमने पूछा था कि इस गाने का सिंगर कौन है एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स उदित नारायण एंड बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके लिए थैंक यू सो सो मच सही जवाब सभी लोगों ने भेजा है आज कोई गलत जवाब नहीं मिले हमें लेकिन लकी ड्रॉ के बाद आज का लकी विनर जिसका नंबर निकल आया है वो है सानवी जबू एंड शी इज फ्रॉम to Anquetil Santa Rosalme. So congratulations to you, my beautiful. You're winning a voucher worth 500 rupees offered to you by Mystic World. So thank you so much for participating. We'll be having someone from the MBC. They'll be calling you to give away your gift. Thank you so much for participating and well, we'll talk

0: those जिन्होंने आज नहीं जीता है दिल छोटा नहीं करते बेटर लक नेक्स्ट टाइम सो हियर वी गो लेट्स ऑल कंटिन्यू विद सम गुड म्यूजिक
1: RM2 Radio

0: to Radio Mustang. Traffic
1: update. बिल्कुल जी काम से निकल चुके हो घर पे जाने के लिए. वैसे अगर आप पोर्ट लुइस से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो हैवी ट्रैफिक बिल्डअप देखने को मिल रहा है. दोस जर्नी टाइम तो नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि अभी पीक टाइम है. और पोर्ट लुइस से अगर साउथ डायरेक्शन में भी हम देख सकते हैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और मेजर रूट्स पर स्लो मूविंग व्हीकल्स की वजह से डिलेज रिपोर्ट हो सकता है. और अगर आप रेजुई से फिनिक्स की तरफ जा रहे हो तो रेजुई से फिनिक्स कॉरिडोर पर ट्रैफिक बहुत स्लो है. ड्राइवर्स को पेशेंस रखने की सलाह दी जाती है और कंजेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट द स्ट्रेच. सो रोजिल और कैटरबोन एरिया में आज यूजुअल इवनिंग रश देखने को मिल रहा है और मेन रोड्स और जंक्शन पर ट्रैफिक काफी स्लो मूविंग है, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स मूविंग. सो क्यूपिप से अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं सो क्यूपिप से साउथ की तरफ भी ट्रैफिक डेंस है, स्लो मूविंग है और व्हीकल स्लो पेस पर मूव कर रहे हैं. और अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी शेयर मेजर एक्सीडेंट या सीरियस रोड इंसिडेंट का कोई रिपोर्ट नहीं मिली, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो जस्ट ड्राइव केयरफुली गाइज. और आप रोड पर हैं और कोई ट्रैफिक अपडेट शेयर करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए ऑन 5499-1294 पर. हम तो बस इतना कह सकते हैं कि ड्राइव सेफ, मेंटेन सेफ डिस्टेंस वाइल ड्राइविंग और हमेशा साथ जुड़े रहे और ट्रैफिक अपडेट्स के लिए सुनते रहे RN2 रेडियो मस्ती एंड फॉर सम गुड म्यूजिक एज वेल. तो चलिए जी, जितने भी हमारे शहर की लड़की हैं अगर आप हमें सुन रहे हो, here we go, this one goes out to you.

0: स्टूडियो के घर में 6:45 हो चुके हैं अभी. हाय गाइस टू एवरीवन हु इज ड्राइविंग राइट नाउ. अगर आप काम से निकल चुके हो घर पे जाने के लिए एंड बस में बैठे हो, मेट्रो में हो, टैक्सी में हो, गाड़ी में हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, थैंक यू सो सो मच माय डियर. और फिलहाल के लिए चलिए बॉलीवुड की दुनिया से निकलकर आपको लेके जाएंगे स्ट्रेट अवे स्पोर्ट्स की दुनिया में.
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट.
2: स्पोर्ट्स न्यूज़
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: तो चलिए जी, गेट रेडी फॉर सम लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ हमारे स्पोर्ट्स गुरु के साथ. वी डू हैव अरविंद हमारे साथ. सो गुड आफ्टरनून टू यू.
4: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून आरएम2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. आज सुबह इजिप्ट की जीत हुई 3-1 से न्यूजीलैंड पर. 92 ईयर्स लगे हैं वर्ल्ड कप में एक गोल स्कोर करने के लिए इजिप्ट की टीम. सलाह का एक गोल रहा, एक असिस्ट भी उसकी ओर से. सलाह सेकंड हाफ में उसका शानदार परफॉर्मेंस रहा. तो अब इजिप्ट के पास है 4 अंक कह सकते हैं क्वालिफिकेशन के एकदम करीब, क्योंकि ईरान के पास है 2 अंक, बेल्जियम के पास 2 अंक. बेल्जियम जो एक बार फिर फंस गया.

0: का मैच ड्रॉ गया। आज के मैच अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया ये 9 बजे होगा। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया दोनों की जीत हुई थी पहले मैच में, दोनों के पास 3-3 अंक हैं। जो जीतेगा आज अगले राउंड के लिए टिकट बुक कर लेगा, लेकिन इससे और जरूरी है एक गोल लियोनेल मेसी के लिए, वो गोल जो उसे फीफा वर्ल्ड कप में ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बना सकता है अकेले, वह भी मिरोस्लाव क्लोजे से बराबर है। तो आज एक गोल उसे हिस्ट्री में ला सकता है। फिर ग्रुप आई में फ्रांस इराक, फ्रांस की टीम भी क्वालिफिकेशन के कगार में है। 1 बजे ये मैच होगा। फिर 4 बजे नॉर्वे सेनेगल वाला मैच, ये मैच लाइव आप लोग देख पाएंगे स्पोर्ट्स 11 पर। और जॉर्डन अल्जीरिया ये सुबह 7 बजे का मैच है। तो आज 4 मैच, इन सब पर आपको जानकारियां देते रहेंगे। कीप ऑन लिसनिंग रेडियो मस्ती।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Puis cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

0: हर तरीके के गाने लेकर आते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल चॉइसेस जस्ट टू ब्रिंग अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस माय ब्यूटीफुल लिसनर्स आउट देयर जो साथ दे रहे हैं. वेल आज है मंडे 22nd ऑफ जून 2026. टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेस आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती. वैसे अगर आप इस वक्त स्टीयरिंग व्हील के पीछे हो मेरी जान तो ये शो स्पेशली आप ही के लिए है. फास्ट लेन में म्यूजिक, फुल लेन में मस्ती, ये है रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती जहां हर गाना देता है आपको एनर्जी का एक्स्ट्रा बूस्ट. सो कीप ड्राइविंग, कीप ऑन फोकसिंग ऑन द रोड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ऑन वाइबिंग हमारे साथ. ऐसे देखा जाए रोड्स तो बिजी हो सकते हैं लेकिन मूड जरा इजी इजी पीजी रखो क्योंकि रेडियो मस्ती पर आपकी रफ्तार वाइब्स में गिनेश आपका साथ दे रहे हैं. हिट इतने पावरफुल कि हर किलोमीटर आपको ऐसा लगता है कि हर गाने आप ही के लिए हम लेकर आई हैं. सो बकल अप एंड टर्न इट ऑन द म्यूजिक वेरी हायर क्योंकि अगला गाना आई एम गोइंग टू टेक यू बैक टू सम लवली मेमोरीज.
1: RM2 Radio Mastery.

Welcome in the second hour of this beautiful show, and that's your Raftar Vibes. Feel me right with me here, Ganesha, on RMT Radio Masti. Check your time studio ki ghari mein 5:11 ho chuke hai. Phir se ek baar, good afternoon ji, namaskar, aur Ganesha ka pranam. To all those who abhi kaam se nikal ke here, you guys are going to hit the road, so please drive carefully, ji haan. Waise office ka stress, traffic ka pressure, leave it all behind, sab kuch piche chhod dijiye, kyunki Raftar Vibes lekar aa gaye hain, ye music therapy aap logon ke liye, mast energy aur gaane जो आपके आपको रखेंगे टॉप गियर में है बिल्कुल जी. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती विद मी गिनेश और 5499 1294 पर 5499 1294 पर यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस. तो चलिए लेट्स शेयर दिस ब्यूटीफुल जैसे बोलते हैं हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ. तभी तो हम कहते हैं इफ यू नो समवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज वेडिंग एनिवर्सरीज कोई भी ऐसा मौका है जो आप सेलिब्रेट करें आज अपना खुशियां जो है हमारे साथ आप शेयर कर लीजिए और गानों के जरिए हम खुशियां बांटेंगे आप लोगों के साथ. हियर वी गो खुशियां आप बटोर लीजिए.

That was in the lovely voice of Suzanne for you, taken from the movie Avara Pan, जो 2007 में रिलीज हुई थी आपके लिए on RNTR Radio मस्ती. Time बीता चला जा रहे हैं और अभी 5:27 हो चुके हैं और फिलहाल के लिए I've got a special birthday dedication जिसके लिए है उनका नाम है मनीषा. So मनीषा is celebrating her birthday. Mrs. Manisha Risol, it's your birthday today, so I just want to wish you a magical birthday on RNTR Radio मस्ती.

Tabak,

0: बिल्कुल जी, द लवली वॉइस ऑफ सुनिधि चौहान आप लोगों के लिए आज नाचलेश जो 2007 में रिलीज हुई थी एंड वेल खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं स्पेशली फॉर यू माय लवली पीपल आउट देयर. कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन.
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
0: बिल्कुल जी, फैशन टिप्स लेकर आते हैं. हमेशा जब इंसान कपड़े पहनते हैं स्पेशली लेडीज तो कुछ एक्स्ट्रा तो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मेकअप. और अभी विंटर चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि विंटर ब्यूटी टिप में हम लेकर आए हैं कि आप अपने मेकअप को फ्रेश और फ्लॉलेस रखना चाहते हो तो इट्स वेरी इजी. जो मैट फाउंडेशन की जगह होती है ना, हाइड्रेटिंग बेस यूज करें, लिप्स को मॉइस्चराइज करें और सॉफ्ट पीच या रोजी शेड्स चूज करें. और हेल्दी ग्लो इज द विंटर ट्रेंड नाउडेज. और वैसे ठंडी हवा स्किन को ड्राई रख सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसीलिए मेकअप से पहले एक गुड मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं. और ड्यूई मेकअप लुक विंटर में ज्यादा नेचुरल और रेडिएंट लगता है. और कपड़े तो आपको तो पता है कि वार्म कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि इट्स विंटर सीजन एंड मॉरिशस.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. ऑन आवर एम टू रेडियो मस्ती, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में इट्स एग्जैक्टली 6 पीएम.
1: आवर एम टू रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
1: Radio Musti.
4: North. South.
1: 103.5.
4: East. West.
1: 96.4.
4: Center.
1: 99.4.
5: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.

नमस्कार 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रीय सभा में पेंशन के लिए प्रस्तावित मींस टेस्टिंग को फिलहाल फ्रीज करने की घोषणा की। संसदीय सत्र से पहले मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने बताया कि सरकार ने पेंशन सुधारों पर जनता की राय को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। पेंशन सुधारों पर मींस टेस्ट को निलंबित करने के बाद समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने श्रमिक संघों के साथ बैठक लगाई। इसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ बैठक के बाद मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि इस मामले में विवेक की जीत हुई है। विपक्ष नेता जुलेश रोंगा ने राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार को देश के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात बताया। हालांकि उन्होंने 2026-2027 के बजट में मैटरनिटी लीव की समीक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना बढ़ाने जैसे कुछ कदमों का स्वागत किया। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 पर बहसें शुरू। कृषि सेक्टर में श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए 1,000 से अधिक विदेशी कामगारों के आवेदन प्राप्त हुए। मॉरिशस इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक संशोधनों की प्रतीक्षा कर रही है जिससे विदेशी श्रमिकों की भर्ती आसान होगी। विदेश स्तर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने अपनी लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बाद एक टेलीविजन संबोधन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

0: नमस्कार, इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राज्यसभा में मींस टेस्टिंग को फ्रीज करने की घोषणा की। इसका अर्थ है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु लाभार्थियों के संसाधनों और आय की जांच फिलहाल नहीं की जाएगी। आज सुबह संसदीय सत्र से पहले डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सरकार के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता संभाली। इस बैठक के बाद समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेंशन सुधार से संबंधित जनमत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है।
1: Madam Speaker, after my budget speech of last Friday, I've listened to the views and heard the views of the population to the proposed measures regarding pension reform. The population has clearly already realized the unsustainability of the basic retirement pension, as we have known it. The measures taken last year have already positively impacted the economy, and we have already seen how it has helped public finances. I have this morning met a number of my ministers with the technicians on pension reform and those of the Ministry of Finance to discuss the matter further. I have taken on board the suggestions made. Anxious of the concerns of the people, whilst it will have consequences both on the budget deficit and on the public sector debt, we have decided to freeze the means testing proposed. Thank you.
0: अशोक सुभो ने पेंशन के लिए पात्रता हेतु मींस टेस्टिंग को फ्रीज करने के प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत किया। समाज सुरक्षा मंत्री के अनुसार डॉक्टर नवीन राम गुलाम को गलत सलाह दी गई थी। मंत्री सुभो के अनुसार पेंशन संबंधी कोई भी सुधार अलग से परामर्श का विषय होना चाहिए, न कि इसे बजट में शामिल किया जाना चाहिए। समाज सुरक्षा मंत्री और उनके जूनियर मंत्री कुगन पाहपे ने 2026-2027 के बजट में प्रस्तावित पेंशन सुधारों पर चर्चा करने के लिए आज श्रमिक संघों के साथ बैठक के बाद प्रेस से मुलाकात की। स्टेट एज पेंशन में सुधार को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। यह ऐलान प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में किया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन यह फैसला यूनियनों को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर पाया है। वे इस रोक के दायरे पर स्पष्टीकरण मांग कर रही हैं और सुधार लाने वाली विशेषज्ञ समिति से ये बताने का आग्रह कर रही हैं कि आय मापदंड पेश करने के पीछे क्या तर्क था। तो आज राज्यसभा में बजट पर बहसें शुरू हो गई। पहले वक्ता विपक्ष नेता थे, जिनका भाषण मुख्य रूप से ओल्ड एज पेंशन प्रणाली में सुधार पर केंद्रित रहा। जुलेशों गांव ने इस सुधार को विश्वासघात करार दिया है।
2: विपक्ष के नेता ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित नई पेंशन व्यवस्था सुधार की आलोचना की है। रोली जोगाओ के अनुसार इस सुधार ने आम जनता के बीच भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है।
3: एक्सप्लिकेशन सर ला पेंशन ने क्लेयर पुर पर्सन मैं ऑन डॉ ले रिकनेट सफ पुर ला कमीशन डेस एक्सपर्ट डेस ग्रैंड्स एक्सपर्ट की विएन डू प्रिवे qui ont proposé un nouveau mécanisme. Quels revenus sont réellement visés par cette contre-réforme? Le salaire est pris en compte, les revenus professionnels sont pris en compte, les revenus d'affaires sont pris en compte, les revenus locatifs sont pris en compte, les pensions contributives sont prises en compte. Environ 80 000 citoyens qui comprennent des employés du secteur public et privé touchent une pension privée. Mais par contre, les dividendes, eux, ne sont pas pris en compte. Et c'est là que l'injustice devient flagrante, Madame la Présidente. La pension n'est pas une faveur. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas une dépense à réduire froidement dans un tableau Excel. Madame la Présidente, ce que le gouvernement fait, je le redis, est une escroquerie.

0: पॉलिटिक्स।
1: हालांकि जोली जोगो ने ये भी स्वीकार किया कि बजट 2026-2027 में शामिल कुछ उपायों का भी स्वागत करती है।
0: La révision du maternity leave, le menstrual leave, la dotation de 10 millions de roupies pour lutter contre le problème de bullying dans les établissements scolaires, l'allocation de 133 millions de roupies pour l'acquisition des manuels scolaires et de matériel pédagogique et la mise sur pied d'une foundation practical programs pour les enfants qui sont en grade 7 et grade 9. Parce que, on le sait, une bonne partie de ces enfants ne réussissent pas la SI et se retrouvent sans formation et sans emploi. Le lundi férié, au cas où un jour de congé public est un dimanche. Toutefois, il faudra éclaircir. Si la fête de la Pâque, qui est toujours fêtée un dimanche, est considérée comme un congé public. Et le lundi des Pâques, à ce moment-là, ce que je comprends, sera férié. La hausse de l'amende pour la pollution sonore de 10 000 à 20 000 roupies, ça aussi, c'est une bonne mesure.
1: जोली जोंगो ने अपने संबोधन में शागुस मुद्दे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोग, उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, जल प्रबंधन, पुलिस बल को मजबूत बनाने और नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार रखे।
2: गजा उतिम ने बजट को साहसी और जिम्मेदार बताया है और तर्क दिया कि पेंशन सुधार एक आवश्यकता है। विपक्ष नेता को जवाब देते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि यह बजट भविष्य की ओर देखने वाला बजट है। सांसद माघी रुखसाना खुलेत चाहती हैं कि रोड्रिक्स को बजटीय कदमों का समान लाभ मिले। अद्रियान जुवाल ने सरकार से पेंशन सुधार को रद्द करने और पुरानी प्रणाली पर लौटने की मांग की। उन्होंने अपने संबोधन में खर्चों और बर्बादी को कम करने की आवश्यकता तथा कानूनी व्यवस्था के मुद्दे पर जोर दिया। सांसद रोशन जमन और बालकृष्ण बाबा जी ने बजट के नवाचारी कदमों पर चर्चा की, जिनमें जनता को विकास के केंद्र में रखा गया है। कृषि सेक्टर में स्थानीय श्रम शक्ति की कमी का सामना कर रहे साझेदारों द्वारा पहले ही विदेशी सहायता के लिए 1,000 से अधिक आवेदन दिए जा चुके हैं। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी विदेशी श्रमिकों के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए ढांचे में आसान संशोधन की प्रतीक्षा कर रही है। रजनी बीकर।
3: यहाँ लामारी में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन के अंतर्गत संगठित 80 खेतीहरों ने मदद की मांग की है। उन्हें इस सीजन के लिए कम से कम 100 विदेशी कामगारों की जरूरत है। कामगारों की कमी के चलते कुछ लोगों ने अपनी जमीनें त्याग दी है। MCIA के जरिए 100 कामगारों की मांग की गई ताकि संगठन में लगा सके। देख रहे हैं कि उत्पादकता कम होने लगी है। खेतिहर 3-4 बीघा जमीन संभालते थे पहले, अब 1-1 बीघा ही संभाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कामगारों के अभाव के चलते उत्पादकता घट रही है, फसल में भी देरी हो सकती है। ईख के गन्ने के सेक्टर में भी कर्मचारियों की कमी महसूस की जाती है। अगले सप्ताह कटनी शुरू होने वाली है। मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड में संगठित 108 कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने MCIA को अपनी जरूरतों के बारे में बताया। मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के CEO सचिन सुखना ने कहा, हर कोऑपरेटिव मांग करेंगे कि उन्हें कितने कामगारों की जरूरत है। क्षेत्रफल और टन के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जिन कोऑपरेटिव्स के 200 खेतीहर हैं, तो तय किया जाएगा कि एक खेत के बाद दूसरे खेत में काम कर सकें। खेतों को भी संगठित कर रहे हैं ताकि लॉजिस्टिक्स और श्रमिक खर्च भी कम हो। मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी में बातचीत में काफी प्रगति हो रही है। कानूनी ढांचे पर गौर किया जा रहा है और बहुत जल्द ये साकार होने वाली है। अप्रैल महीने से विदेशी कामगारों की मांगें करीब 1,000 की बताई जाती है। MCIA के CEO डॉक्टर सुमन सिरतन ने कहा, बहुत जल्द नए रेगुलेशंस के साथ आ रही है। एक कानूनी ढांचा होगा संचालन के ढंग पर, जिसके अंतर्गत एक सिस्टम

जहां कामगार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ होगा या फिर कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ। कामगार अलग अलग खेतों में काम करने जा सकेंगे। मुख्य रूप से भारत से कामगार ला रहे हैं, उनकी अलग संस्कृति है। गन्ना ही मॉरिशस की तरह नहीं उगाए जाते हैं। पहले सप्ताह में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।

0: 2000 से अधिक विदेशी कामगारों को बुलाना, खासकर कृषि उत्पादन एवं गन्ने के क्षेत्र में समर्थन के लिए।
1: BCP बैंक की मॉरिशस शाखा ने देश में अपने विकास के एक नए चरण में कदम रखा है, जहां गुरुवार को तेलफिया मुकामी इसके नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मोरक्को से आए ग्रुप के अधिकारी और बैंक ऑफ मॉरिशस की गवर्नर उपस्थित रही। ये परियोजना मॉरिशस की मंडी में संस्थान की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है।
2: BCP बैंक मॉरिशस का नया मुख्यालय अब तेलफिया मुकाम में स्थापित हो गया है। साल 2018 के अंत से मॉरिशस में संचालित और मोरक्को के बैंकिंग समूह के बैंक सेंट्रल पॉपुलेयर की सहायक संस्था BCP बैंक के लिए ये नया परिसर मॉरिशस के बैंकिंग क्षेत्र के प्रति समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये मॉरिशस और बैंक की यहाँ की शाखा के प्रति ग्रुप की प्रतिबद्धता दर्शाता है तथा महाद्वीप में अपनी सेवा देने के लिए भी अच्छी स्थिति पर है। इसके अलावा बैंक एशिया और अफ्रीका के बीच एक पुल का काम करेगा।
3: De pouvoir être le passerelle entre l'Asie et l'Afrique.
2: इस अवसर को चिन्हित करने के लिए मोरक्को से ग्रुप का एक प्रतिनिधिमंडल तथा बैंक और मॉरिशस की गवर्नर भी मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए मॉरिशस एक अत्यंत ही आकर्षक वित्तीय केंद्र के रूप में सामने आता है, पर सुधार की हमेशा संभावना रहती है। पर अपने महत्वपूर्ण भौगोलिक जगह पर स्थित होने और अपनी स्थिरता के चलते मॉरिशस निवेश के लिए बहुत उपयुक्त है। ये बैंक के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
1: और फुटबॉल विश्व कप में स्पेन को बराबरी पर रोकने के बाद विश्व कप में पदार्पण कर रही केप वर्डी की टीम ने आज तड़के एक शानदार मुकाबले में उरुग्वेटो को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया। हाफ टाइम तक पिछड़ने के बावजूद ब्लू शार्क्स ने वापसी करने का जज्बा दिखाया और लगातार अपना दूसरा ड्रॉ खेला, जिससे ग्रुप एच का समीकरण बेहद रोमांचक और अनिश्चित हो गया। विश्व कप 2026 के कार्यक्रम में चार मुकाबले हैं, जिनमें पसंदीदा टीमें तो मैदान में हैं, लेकिन वे पहले से ही दबाव में हैं और साथ ही ऐसे आउटसाइडर भी हैं जो क्वालिफिकेशन की दौड़ में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। अरविंद बिसी सर,
4: डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का दूसरा मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ होगा। मकसद है अपनी शानदार शुरुआत की रफ्तार को बरकरार रखना। इस ग्रुप में लीडर है अर्जेंटीना और फेवरेट भी लालबी सेलेस्टी। तकनीकी तौर पर मजबूत टीम है, अनुभव की कमी नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बिना डरे बेझिझक आज खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद करेगी कि अर्जेंटीना कुछ गलती करे जिसका फायदा ये लोग उठा सकते हैं। ये मैच 9 बजे खेला जाएगा। लियोनेल मेसी के सामने मौका है विश्व रिकॉर्ड को अकेले अपने नाम करना। फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा, ये सुबह 1 बजे। ले ब्लू ने भी शानदार शुरुआत की थी और ग्रुप आई में ये लोग आगे हैं और किलियान एम्बापे, डुए देम्बेले, बाकोला, चर्की जैसे खतरनाक खिलाड़ी हैं। पर सावधान रहना होगा इराक से, वो भी अच्छी टीम है, काउंटर अटैक में खतरा है। ग्रुप आई में ही नॉर्वे खेलेगी सेनेगल के खिलाफ। 4 बजे ये मैच होगा सुबह और इसे आप लोग NBC टीवी पर देख पाएंगे। दोनों टीम शारीरिक रूप से अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, मैच में रफ्तार होगा। अर्लिंग अलोन अपने पहले मैच की तरह गोल स्कोर करना चाहेगा। सेनेगल अपने पहले मैच में हार गई थी, अब हारना मना है नहीं तो। और कल सुबह 7 बजे जॉर्डन का मुकाबला अल्जीरिया से होगा। ये ग्रुप डी का मैच है। अल्जीरिया के अनुभव पर विश्वास किया जा सकता है और जॉर्डन की टीम में भी सामूहिक खेल देखने को मिलते हैं और इसका फायदा ये लोग उठा पाएंगे।
1: विदेश स्तर पर सर केर स्टार्मर ने आज यूके के प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। सरकार के इस अलोकप्रिय मुखिया को महीनों से इस्तीफे की मांग का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गुरुवार को लेबर पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वी एंडी बरहम के संसद के लिए चुने जाने के बाद उनका पद पर बने रहना असंभव हो गया था। अगले तीन दिनों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच चीनी अधिकारियों ने पहाड़ी नालों और शहरी

0: जल भराव के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। उधर जर्मनी में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा आशिता रघु के साथ।
1: मॉरिशस के लिए समुद्र में बड़े ज्वार उठने की चेतावनी जारी है, जो आज सोमवार 22 जून 2026 रात 10 बजे तक लागू है। दूसरी ओर मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाली जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य और ठंड हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और हल्की हवा बहेगी, विशेषकर सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर। दिन के दौरान कल बादल घिरे रहेंगे और रह कर वर्षा होगी, विशेषकर ऊंचाइयों पर। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और चंद जगहों पर झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 4 मीटर के ज्वार उठेंगे। ये ज्वार विशेषकर पश्चिम और दक्षिण वाले तटों पर टूटेंगे, अतः मछुआरों और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों तथा जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में तथा तटों के किनारे न जाएं। धीरे धीरे रात के दौरान ये ज्वार कम होते जाएंगे। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:39 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:45 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। अनिरुद्ध जागीसर रोड थ्री बुटीक यूनियन वेल में श्रीमती संता जागीसर की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम भरीलाल, उनकी अर्थी कल उन्हीं के मकान यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। समय है कल दिन के 1:30 बजे। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। बस्के लेन लाक्वाजे शेबल ग्रोकायुमे 86 साल के T6 years old के हेमराज कुंजो बिहारी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान घोकायु से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिशलियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। अवनी सीते पदगो तमारेमे 47 years old के श्री नारायण देव निमाय, लोग उन्हें बबाल के नाम से अधिक जानती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 3 बजे उन्हीं के मकान तमाहे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। स्कूल लेन दागोतिया में 48 years old की 48 साल की रिश्मावती खुदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम न्यासू, लोग उन्हें सजनी के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10:30 बजे उनके पति के मकान रामेश मोहन प्रसाद के मकान दागुचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्तों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। कालीमाई रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 75 साल के 75 years old के बासदेव रघुनाथ की

0: मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी मानती रघुनाथ के मकान ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। समसुंदा रोड बेलवेडिया में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की कुसिला अंचराज की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम जीवन, लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उनके बेटे विशाल अंचराज के मकान बेलवेडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंदे मासपावी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: अगर आपका दिल भी थोड़ा शोर कर रहा है और सुबह की इस रश वाली रूटीन में आपका दिल थोड़ा सा थक गया है, तो आपके दिलों को और भी ज़ोर से धड़काने के लिए हम खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बस एक बार फिर से आपसे यही कहना है कि इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द कूल सूदिंग ब्यूटीफुल गाने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। एंड इट्स योर इवनिंग लाउंज, ऑफकोर्स प्यार भरी बातें करेंगे और कुछ प्यार भरे नगमे भी आपको सुनाते रहेंगे। तो चलिए, जहां से भी साथ रहे होंगे, थैंक यू दिल से कि आप लोग अपने बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमें याद करते हैं। और वो लोग तो एक्स्ट्रा स्पेशल होते हैं जो मैसेजेस तो भेजते हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें फ़ोन करते हैं। यस यस, कहने का मतलब यही है कि आज लाइन खुली हुई है, तो आप ज़रूर हमसे कुछ बातें कर सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि किस तरीके से आप इस मंडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं। ऑन 4028035 कट सौ कतवा थॉन सैक पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स फ़ोन उठाकर नंबर डायल कीजिए एंड अपने इस इवनिंग को थोड़ा और मैजिकल बनाइए रेडियो मस्ती के साथ।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: वेल वेल, प्यार किया है चोरी चोरी, इजहार किया है चोरी चोरी, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर यू टू नो दैट प्यार किया तो डरना क्या, ये इजहार इकरार आपको चोरी चोरी नहीं बल्कि दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना है कि आपको किससे प्यार है और कितना प्यार है। वेल, 7:17 हो चुके हैं, चलिए लाइन पर कोई है, हमारी प्यारी सी उर्वशी जी, हमेशा जब शो सुनती हैं तो उनका फ़ोन आ ही जाता है और आज शायद बोल रही थी कि नई नई खाना निकाल दिया है तो आज ऑन एयर बात नहीं करेंगी, लेकिन आपको तो करना ही करना है। हेलो उर्वशी जी, नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक,
0: आप बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सोचा कि आज आपने बोला कि नहीं नहीं ऑन एयर नहीं जाना है, तो ये मौका तो हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे हाथ से, क्योंकि हमेशा आप फोन करते हैं ना, तो हम इस मौके को मिस नहीं करना चाहते थे। चलिए उर्वशी जी, मुझे पता है आपने खाना लगा दिया है, तो आपको एडवांस में बना पिची और बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है। पी यू बोले। हाँ, एक्चुअली उर्वशी जी ने हमें ऑफ एयर बता दिया था और हमने उनको यही बोला कि उनका जो सिलेक्शन है ना, दिन ब दिन बहुत ही एक्स्ट्रा रोमांटिक और एक्स्ट्रा स्पेशल ही हो रहा है। क्या बात है, लास्ट टाइम आपने ऐसे ही खूबसूरत गाना मांगा था फ्रॉम द मूवी विवाह, अभी तक दिमाग में ये गाना चल ही रहा है, कितना स्वीट गाना था दो अनजाने अजनबी, और आज पी यू बोले। एंड आई एम जस्ट श्योर कि अभी आप खाते खाते इस गाने को सुनेंगे ना तो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे, है ना उर्वशी जी? तो चलिए, थैंक यू सो मच उर्वशी जी हमें फोन करने के लिए, और आपको एक बार फिर से बनापेची शुभाहार। बाय। तो चलिए, ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी, और आप भी अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमें याद करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके मैसेजेस का इंतजार ऑन 5499-1294, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4280-3500 पर। चलिए, यहाँ पर कोई है जो हमें ऑलरेडी फ़ोन कर रहा है या कर रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो,

0: दिव्या भारती जी,
1: राजेश साहब कैसे हैं आप?
0: ठीक है जी, ठंडी बहुत ठंडी ठंडी हवा
1: यहाँ, बहुत ही ठंड है। हमने सोचा था कि विंटर सीजन ने धोखा दे दिया, लेकिन मैं तो खुद चौंक गई क्योंकि नॉर्थ रीजन में इतना ठंड है। तो मुझे लगता है कि जो सेंट्रल प्लेटू में रहते हैं, जो मतलब ऊंचे ऊंचे इलाकों में रहते हैं, वहां पर कितना ठंड हो रहा होगा।
0: मे भी यहाँ सीजन बहुत ठंडी है। मैं देखता हूँ जो भी लोग आते जाते हैं सब में जैकेट पोलो सब पहन कर लोग जा रहे हैं।
1: हाँ, एक्चुअली आपने सही बोला, विंटर सीजन में बहुत सारे लोग हैं ना जो पोलो डालते हैं, मतलब खुद को मतलब अपने कानों को ढकने के लिए, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, एंड इट्स गुड टू नो कि लोग अपने आप को इतना ढक रहे हैं टू कीप देम सेल्फ वार्म। लेकिन कभी कभी राजेश जी अचानक से कोई ऐसा सामने आ जाता है ना, तो हम डर जाते हैं। चलिए बताइए राजेश साहब, आप आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: आज तो मैं अभी सोच आपसे बात करते वो भी मुझे हो गया, फिर भी मैं गीत मांगना चाहता हूँ।
1: हाँ बताइए बताइए कौन सा?
0: जो उदित नारायण का गीत है, जादू तेरी नजर।
1: ओके, ये तो डर मूवी से लिया गया है।
0: तेरा
1: वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत गाना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड आपको हम दिल से थैंक यू कहेंगे कि आपने इस गाने को मांगा, क्योंकि ये गाना ऐसे ही रोज रोज नहीं चलता है। बस आपने इस इवनिंग को और भी एक्स्ट्रा स्पेशल बना दिया है इस गाने के साथ। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, एंड बस आप जुड़े रहे हमारे साथ। ओ माय गॉड, चलिए आप अपने गाने को सुनने के बाद जरूर ये एक्सप्रेशन देना। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो चलिए ये थे हमारे राजेश साहब, और चलिए अपने फिल्मी अंदाज के साथ उनके हमेशा फोन कॉल्स आते रहते हैं। तो चलिए अभी के लिए उर्वशी जी का गाना हम जरूर चलाएंगे आप लोगों के नाम भी।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: वैसे अभी के लिए तो मुझे पूरा यकीन है कि जिन जिन लोगों का नाम किरण है, इस गाने को सुनने के बाद तो शायद आप बहुत ही खुश हो रहे होंगे। वेल शाम के 7:30 बज चुके हैं। टू ऑल दोज हैविंग देयर डिनर राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बन अपेटी, शुभ आहार। एंड चलिए, खाना खाते खाते खूबसूरत गीतों का साथ देना, इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और हमेशा हम कहते हैं ना कि इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड कि जब कोई गुड म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड होता है तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि गुड म्यूज़िक के साथ जुड़े रहने के बाद इट विल डू गुड टू योर बॉडी एंड योर मेंटल हेल्थ एज वेल। तो चलिए, कल सब लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया म्यूज़िक डे एंड योगा डे, एंड आई जस्ट होप कि आपको यह एहसास हो कि रेडियो मस्ती में बस एक दिन के लिए ही हम म्यूज़िक को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बाकी वी सेलिब्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द 365 डेज। चलिए, यहाँ पर यशना का फ़ोन आया था और हमने उनको बोला कि लाइन पर रहो और लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आपको हम वापस से फ़ोन भी कर रहे थे लेकिन आपका फ़ोन लग नहीं रहा है, तो कोई बात यशना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। और आपने बोला कि इट्स योर फर्स्ट टाइम एंड हम बहुत ही खुश होते अगर आप ऑन एयर हमसे थोड़ी बातें कर लेते। एंड वो कहती हैं कि किचन से हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, और उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट भी की है चांद छुपा बादल में। जब हमने उनसे पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं बादल में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही हम चांद को बादल में ढूंढ रहे थे। सो यशना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मे बी यू हैड सम डेडिकेशन, सम नेम्स टू ऐड इन द सॉन्ग, पता नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो ये गाना खासतौर से आपके नाम, एंड जब भी टाइम मिले तो ज़रूर फिर से फ़ोन करिएगा।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Musti.

0: जब कोई आ जाता है ना तो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बदल जाती है कि आपको खुद यकीन नहीं आता है. मे बी आपके दिल को थोड़ा शक हो रहा है कि ये प्यार है, लेकिन जब दिल को थोड़ा सा शक होता है ना तब आपको 100% श्योर होना चाहिए कि यही प्यार है, वरना आपको शक होता ही नहीं. चलिए आपके प्यार के लिए और प्यार के साथ साथ हम प्यार के बारे में बात भी कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो लाइन खुली हुई है, वेटिंग फॉर योर फोन कॉल्स ऑन 4282835. एंड चलिए, जो लोग हमसे बात नहीं करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है या फिर लाइन नहीं मिलती है, पहली बार के लिए आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 4282835. कैट्सैक पर आपका इंतज़ार कर रही हैं, और यूजुअल कॉलर्स से बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा बहुत दूसरों को भी मौका दें. चलिए यहाँ पर किसने कहा है, हेलो दिव्या आंटी. नेक्स्ट गाना गुजार फॉर अनु रामसरन, जिन्होंने 20 जून को सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे. बेस्ट विशेज फ्रॉम हस्बैंड अक्षय, मामा प्रतिमा, पापा रंजीत, सीताराम, बहन पूनम, सुधु, वीना जीवन एंड लवना इसुरी, फ्रॉम भतीजी आयशा, भतीजा है दियान सुहावनोव, पिच राफे, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर आप कहते हैं गुड इवनिंग ऋषि विदेशी, और आप कहते हैं आप थोड़ी सी बीमार हैं और आपका आपको मौका नहीं मिला ये सुनने के लिए कि अभी के लिए कौन शो कर रहा है. चलिए कोई बात नहीं, आपको हम बता देते हैं कि अभी दिव्या साथ दे रही है टिल 9 PM. थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए ऋषि जी. एंड आपने गाना मांगा है गहरा हुआ, पॉसिबल हुआ तो हम इस गाने को चलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. फिलहाल के लिए चलिए एक 90s खूबसूरत गीत आप लोगों के लिए पेश कर रही है, टू ऑल द 90s लवर्स. और मे बी इस वक्त आपका खाना हो गया, ऐसा होता है ना कि आप खाना खा लेते हैं और कभी कभी रास्ते पर ही आप थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, या फिर अगर आपका यार्ड थोड़ा सा बड़ा है उधर आप थोड़े बैठ के बालकनी में अपने रेडियो के साथ हमसे जुड़ जाते हैं. तो चलिए इट्स वेरी नाइस टू नो कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. एंड वी हैव डीजे डेविसन कनेक्टेड विद अस फ्रॉम लालमाची, थैंक यू सो मच डीजे डेविसन हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एज वेल.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Well, it's a beautiful one taken up from the movie Bahubali. Aditi Paul and Deepu ki awazon mein. Chaliye 1957 already and kuch hi der mein hum kadam rakhne ja rahe hain. In the second hour of your evening lounge, dekhiye baat karte karte aur खूबसूरत गाने सुनाते सुनाते ये टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता. दिस इज द मैजिकल इफेक्ट ऑफ म्यूजिक. तो चलिए स्टे मैजिकल एंड स्टे म्यूजिकल रेडियो मस्ती के साथ.

0: प्यार में दिल थोड़ा सा और बेकरार हो जाता है, थोड़ा सा और बेचैन हो जाता है, इसलिए आपके बेकरार और बेचैन दिलों को थोड़ा सा करार और थोड़ा सा चैन दिलाने के लिए हम वापस एक बार फिर से मुलाकात कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक रोमांटिक कूल सूदिंग ब्यूटिफुल रोमांटिक ट्रैक्स आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने आप में ही अच्छा फील करें। वैसे जब भी गुड म्यूज़िक चलता है ना, तो इंसान अपने आप रिलैक्स करता है और ऐसे में आपका नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स करने का मौका मिलता है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को सुबह सवेरे मंडे ब्लूज़ भी होता है, और शायद आपका दिन बहुत ही हेक्टिक था आज, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ ब्रेक फॉर योरसेल्फ। तो अभी के लिए आप बस आंखें बंद करके हमारे हर एक गीत को महसूस कीजिए एंड प्यार में और डूबते चले जाइए। वेल, 8:08 हो चुके हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल वंडरफुल मंडे ईवनिंग, जहां पर एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। तो चलिए यहां पर एक और खूबसूरत गाना मिस्टर आशिक मूवी से लिया गया, डोंट फॉरगेट इट्स योर इवनिंग लाउंज, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। और चलते चलते यही गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे रॉय के लिए। मे बी आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, सो आपको हम कहेंगे हैव अ सेफ ड्राइव विद रेडियो मस्ती, थैंक यू फॉर चूजिंग रेडियो मस्ती, एंड ये अगला गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू रॉय, एंड एंजॉय दिस नेक्स्ट वन।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musty.

बिल्कुल दोस्तों, दिल से दिल तक की आवाज़ बिल्कुल आनी चाहिए। और अगर आप सोचते हैं ना कि कोई है जो आपको बहुत ही भा रहा है और आपका दिल शायद बार बार उनको ही सोच रहा है हमारे हर एक गीत को सुनने के बाद, तो ऑफकोर्स हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर यही बताएंगे कि शायद आपको प्यार हुआ है। वेल 8:14, इट्स योर

0: Radio Musty.
1: कोई आपकी जान बन गई है या फिर आप उनको हमेशा ऐसे ही याद करते रहते हैं तो उनके नाम प्यारा सा पैगाम जरूर भेजिएगा ऑन 5499-1294 या फिर आप हमसे कुछ प्यार की बातें भी कर सकते हैं ऑन 42835 काट सौंदर्य का तमाम सैंक पर आपका हम इंतजार कर रही हैं। चिल्मी के लिए इसी स्कोर एंड विशाल मिश्रा की आवाजों में खूबसूरत सा ये गाना। जब किसी से प्यार होता है ना तो खुद ब खुद दिल उसकी ओर खींचा चला जाता है। कुछ ऐसे पल बन जाते हैं जो एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है या फिर कुछ ऐसे ऑर्डिनरी पल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं और उन्हीं पलों को याद करके उनको हम टोकन ऑफ लव या फिर प्यार के कुछ पल का नाम दे सकते हैं। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये पल रोज रोज ही आता है, बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने प्यार को, अपने चाहने वाले को वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ये रियलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वक्त सब लोगों को सेम ही मिलता है, बस आपको वक्त निकालना होता है। कहते हैं ना कि प्यार में अगर आप किसी को अपनी कीमती चीज दे पाओ तो वो है आपका वक्त, आपका अटेंशन, आपका अफेक्शन और आपका प्यार। और प्यार इन चीजों से ही बढ़ता है। मे बी इसीलिए कहते हैं कि दीज आर द की वर्ड्स, दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स टू नरिश योर लव।

0: बिल्कुल, रोज रोज हम जी लेते हैं और आप अच्छी तरीके से और जी सकते हैं अगर आप अपने रूटीन को थोड़ा सा बदलें. एंड ऑफ कोर्स रूटीन बदलने के लिए इसमें थोड़ा बहुत अपने आप के लिए ब्रेक लेकर आना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए, यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे प्रकाशवती जी के लिए. कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग रेडियो मस्ती एज योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. नेक्स्ट गाना आप कहते हैं कि बहुत दिन के बाद आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, दैट्स रियली स्वीट. वैसे हम रोज़ रोज़ यही टाइम पर आते हैं, यानी कि 7 बजे से लेकर आते हैं कि 9 बजे तक. एंड चलिए, आप अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए. एंड थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. सीता भलू राम कनेक्टेड विद अस. नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर ईच फॉर यू नियर एंड डियर वंस. मोम भगवंती के लिए, अमला के लिए आपका मैसेज यहाँ पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट आया है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू. इसीलिए तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नॉर्मल मैसेज भेजने के बजाय व्हाट्सएप पर हमें याद कर सकते हैं, वहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट मैसेज आएगा. नंबर तो वही है 5499-1294. चलिए, कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए खूबसूरत गीतों का कारवा जारी रखेंगे.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

रिश्ते नाते को कभी नहीं भुलाना होता है और वैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में आप कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए लेकिन अपनों को पीछे कभी नहीं छोड़ना है। वेल चलिए साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ये अगला गाना खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त काम करने के बाद थके हारे घर वापस आए हैं, डिनर ले लेने के बाद अभी आप हमारे गीतों से थोड़ा

0: ऐसा आप रिलैक्स कर रही हैं, जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग हर एक गीत को इतना पसंद कर रही हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस। चलिए यहाँ पर अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर योर ट्विन्स रेवांश एंड रेयांश फ्रॉम वॉम वशिनी। आपका आपके पति हैं विजय और ग्रैंडमा वेदा ऑफ हाईलैंड्स के लिए भी अगला गाना। एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से आप डेडिकेट कर रही हैं स्पेशली फॉर योर मामा। दैट्स अ स्वीट मैसेज और आप कहती हैं नमस्ते, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, प्यार ऐसा करो जो आपको स्वच्छंद बना जाए, आपके सपनों की उड़ान भर दें, जैसे परमात्मा ने आपका सृजन आज़ाद पंछी की तरह किया। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है ये और बहुत ही शुद्ध हिंदी के साथ आपने अपने अल्फाजों को बयां किया है। इट्स रियली नाइस सीइंग कि आप इतने खूबसूरत अल्फाज अपनी मामा के लिए आपने डेडिकेट किया हुआ है, सो स्वीट। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना हम डेडिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे फॉर योर मदर, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, हम ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, और अगर आप इस वक्त नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो चलिए मेहनत से काम करते रहिए और हमारे गीतों को एंजॉय करते रहिए।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: बिल्कुल संग ही रखना है और कहते हैं ना कि प्यार प्यार का साया तो हमेशा साथ ही चलता है. वेल 8:51 हो चुके हैं और चलिए कुछ ही देर में आपको बवाई कहने का टाइम भी आ जाएगा. मन तो नहीं करता है घर वापस जाने के लिए लेकिन क्या करें, हम तो जा रहे हैं एक बार फिर से वापस आने के लिए. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर स्पेशल मुलाकात आप लोगों के साथ. फिलहाल के लिए चलिए, वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा गाना हृदय की आवाज में एंड इट्स उरन चू फॉर यू. आई गेस फीलिंग्स ऐसे ही होते हैं जहां पर जब आपको प्यार होता है ना तो इट्स सो मैजिकल कि चारों तरफ आपको बस सब कुछ बदला सा लगता है और ये चेंज सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, है ना. तो चलिए प्यार में डूबे रहिए क्योंकि प्यार के गीतों के साथ साथ आपके दिल को हम बहला रहे हैं. इरादा तो यही है कि आपके दिल तक हर एक गीत पहुंच जाए ताकि आप भी प्यार की दुनिया में खोए रहे.

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वेल चलिए अभी के लिए बाय-बाय कहने का टाइम आ गया है और चलते चलते आपसे हम यही कहेंगे कि मुलाकात होगी ज़रूर और अगली मुलाकात भी बहुत ही खास होने वाली है, इतनी गारंटी तो हम ज़रूर देते हैं। चलिए इस खूबसूरत गीतों को एंजॉय करते रहिए, कल मुलाकात होती है सेम टाइम 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

तो का प्यार भरा नमस्कार, विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग माय डियर लिसनर्स। बस हमारी आवाज अभी भी थोड़ी सी खराब है, लेकिन आपका साथ मिल रहा है ये हुई ना बात, सबसे जरूरी है। अप टिल मिडनाइट इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स, सो व्हाटएवर यू माइट बी म्यूजिकल वर्ल्ड में आप

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Masti.
2: ये कायनात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. गरन में वो नहीं.
3: वो है कौन?
4: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा.
2: नाम?

जब कोई आपको दिल से चाहता है ना, तब जिंदगी की हर मुश्किल थोड़ी आसान लगने लगती है। किसी के प्यार में होना एक खूबसूरत बात है, लेकिन किसी के प्यार का एहसास पाना उससे भी ज्यादा खास बात होती है। जब कोई आपकी खामोशी को समझ ले, बिना कहे आपकी फिक्र करे, तब दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। यही तो है सच्चे प्यार की पहचान।

खूबसूरत गानों के साथ खूबसूरत आपका साथ भी मिल रहा है. थैंक यू सो मच. एंड बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है जब आप जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा है जो हर रोज आपकी खुशी के लिए दुआ करता है, जिसके दिन की शुरुआत और रात का आखिरी ख्याल भी आप होते हैं. ये एहसास दिल को मोहब्बत की रोशनी से भर देता है.

लव्स ऐसे हो तो फीलिंग्स भी खुद ब खुद एकदम जज्बाती हो ही जाती है। वैसे जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसके लिए आपका हर पल कीमती होता है। आपकी हंसी उसकी खुशी बन जाती है और आपके आंसू उसकी परेशानी। ऐसा प्यार इंसान को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति महसूस करवाता है। How lucky you are!

सबसे प्यारा रूप वो ही है जो दिल को सुकून दे। जब आप किसी के साथ होते हैं और लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो गई है, तो समझ लीजिए कि आपको सच्ची मोहब्बत मिली हुई है।

वैसे किसी के दिल में अपनी जगह बना लेना और उसकी हर धड़कन में अपनी आहट महसूस करना, ये एहसास लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी खुशी है जो रूह तक को महक

सेकंड आवर में पहुंच गए हैं। यस ऑफ कोर्स लेट नाइट ग्रुप्स नीतू के साथ ऑन रेडियो मस्ती। तो मोहब्बत की बात चल पड़ी है, तो जब कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको बेहतर इंसान बनने की हिम्मत देता है, हुआ है ना आपके साथ? उसका भरोसा और उसकी मोहब्बत आपको हर दिन नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने की ताकत भी देती है।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: दुनिया में लाखों लोग होते हैं, लेकिन जब किसी की नजरों में सिर्फ आप ही होते हैं, तब दिल को एक अलग सी खुशी मिलती है। किसी के लिए सबसे खास होना मोहब्बत का सबसे अनमोल तोहफा है, जैसे कि आप हमारे लिए सबसे प्यारे और अनमोल तोहफे हैं। और ये जो दोस्ती है, अपनापन है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे।

आपको कहा है कि आपकी फिक्र में आपका प्यार छुपा हुआ है? हाँ, सच्चा प्यार हमेशा बड़े वादों में नहीं बल्कि छोटी छोटी फिक्रों में नजर आता है। खाना खा लिया, घर पहुंच गए, जैसे सवालों में जो प्यार छुपा होता है वही दिल को जीत लेता है। शायद अब समझ में आई बात आपको, जब आपके हबी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके डियर वंस आपसे ये जो छोटे छोटे सवाल पूछते हैं उनमें कितना प्यार छुपा होता है।

Well, जब किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ लीजिए कि आप मोहब्बत के सबसे खूबसूरत एहसास को जी रहे हैं। किसी की खुशी की वजह बनना और उसकी मुस्कुराहट में अपना अक्स देखना बहुत खास होता है। सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। सच्चा प्यार वैसे फासलों का मोहताज नहीं होता। चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, अगर दिल जुड़े हो तो हर पल एक दूसरे की मौजूदगी महसूस हो ही जाती है। ये एहसास ही मोहब्बत को उम्र बना देते हैं।

जिंदगी में नहीं आते बल्कि रूह में उतर जाते हैं। उनका प्यार हमें अंदर से मजबूत करता है और हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है। ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है, तो हाँ, अगर ऐसे नसीब वाले हैं आप, अपने प्यार को हमेशा संजो कर रखे, उनको दूर मत जाने दीजिए। देखते ही देखते वी ऑलरेडी इन द थर्ड आवर। थैंक यू सो मच वंस अगेन इस खूबसूरत सफर लेट नाइट ग्रूव्स में हमारा हम सफर बनने के लिए। जिस तरह तेज धूप में पेड़ की छांव सुकून देती है, उसी तरह किसी का प्यार जिंदगी की थकन मिटा देता है। जब कोई आपके साथ हो तो हर सफर आसान लगने लगता है।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

से दिल तक जब महसूस किया जाता है ये मोहब्बत प्यार इश्क लमोर, तो बस जिंदगी आबाद हो जाती है। वैसे ही मोहब्बत का असली एहसास तब होता है जब दो दिल बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने लगे, जब नजरें बातें करने लगे और खामोशी भी एक कहानी सुना दे, तब प्यार अपने इंतहा पर होता है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ये मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

और दौलत सब मिल सकती है, लेकिन किसी का सच्चा प्यार मिलना सबसे बड़ा तोहफा है। ये वो दौलत है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती चली जाती है।

फाइनली आपसे यही कह सकते हैं दोस्त कि सच्चा प्यार वक्त के साथ कम नहीं होता बल्कि और गहरा होता चला जाता है। हर गुजरता दिन उस रिश्ते को और मजबूत बनाता है। किसी के दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेना ही मोहब्बत की सबसे बड़ी जीत होती है।

ये याद रखें कि प्यार पाना एक खुशनसीबी है, लेकिन किसी के दिल में अपनी दुनिया बसा लेना उससे भी ज्यादा खूबसूरत एहसास है। जब कोई आपको बिना किसी शर्त के चाहे, तब जिंदगी वाकई एक हसीन गीत बन जाती है। टेक केयर, स्टे म्यूजिकल, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: पता है शिखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
4: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: छोड़ो ना।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
0: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: क्यों मस्ती?
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।